सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी

0: 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग,
2: आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

उगते सूरज की किरणों में भारत माँ का मान रहे, हर दिल में देश प्रेम जागे, ऐसा पावन गान रहे। वीरों की कुर्बानी से ही ये तिरंगा शान बना, हम सब मिलकर प्रण करें, भारत सबसे महान रहे।

सत्य की राह दिखाने वाले मन का अंधकार मिटाते हो, दोहे बनकर हर दिल में ज्ञान की ज्योति जलाते हो, माया के इस झूठे जग में सच्चाई का पाठ पढ़ाते हो। हे संत कबीर दास जी, आप हमें सही राह दिखाते हो। कभी

एक ओंकार का मंत्र सुनाकर प्रेम का संदेश दिया। सेवा, सिमरन और सच्चाई से जीवन को पावन किया। हर जन में प्रभु का रूप दिखाकर मानवता का मान बढ़ाया। हे गुरु नानक देव जी, आपने जग को सही राह पर चलना सिखलाया।

भक्ति में जिसने प्रेम बसाया, सबको समान बताया है, जात पात के भेद मिटाकर मानवता का दीप जलाया है, मन चंगा तो कटौती में गंगा ऐसा अमृत ज्ञान दिया, हे गुरु रविदास महाराज जी, आपने जीवन धन्य किया।

जटा में गंगा माथे पर चंदा, नीलकंठ कहलाते हो, डमरू की दिव्य ध्वनि से सारे जग को नचाते हो, भक्तों के हर दुख को हर कर कृपा बरसाते हो। हे भोलेनाथ महादेव, सबके हृदय में आप बस जाते हो।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना, मीडियम वेव 462.94 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है चिंतन। आलेख शालिनी शुक्ला का है और वाचक मुकाम सिंह चौहान। सुने चिंतन।
1: जीवन में इंसान बहुत कुछ सीखता है, किताबों से, लोगों से और सबसे ज्यादा अपने अनुभवों से। लेकिन इन सबके बीच जो चीज उसे स्थिर रखती है वह उसके सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत केवल बड़े बड़े शब्द नहीं है बल्कि रोजमर्रा के छोटे फैसलों में छिपे होते हैं। जैसे किसी की मदद करना, सच बोलना, गलत बात का साथ न देना या किसी का हक न मारना। यही छोटी बातें मिलकर इंसान के व्यक्तित्व को बनाती है। आज की दुनिया में अक्सर लोग सफलता को पैसे, प्रसिद्धि और ताकत से जोड़ते हैं, लेकिन अगर सफलता पाने के लिए इंसान अपने सिद्धांत छोड़ दें तो अंदर कहीं न कहीं खालीपन रह जाता है। कई बार बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है लेकिन मन संतुष्ट नहीं होता। सिद्धांत इंसान को केवल सफल नहीं बल्कि सम्मानित भी बनाते हैं। सम्मान वह चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती। सिद्धांतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं। जब जीवन में उलझन आती है तो समझ नहीं आता कि क्या सही है, तब हमारे सिद्धांत ही रास्ता दिखाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में छोटा सा दीपक भी दिशा देता है, वैसे ही सिद्धांत जीवन की उलझनों में रोशनी का काम करते हैं। जिन लोगों के जीवन में स्पष्ट मूल्य होते हैं वे निर्णय लेने में कम डगमगाते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे आसान और सही रास्ते में किसी एक को चुनना पड़ता है। आसान रास्ता तुरंत लाभ देता है लेकिन सही रास्ता लंबे समय तक आत्मसम्मान देता है। सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति शायद धीरे आगे बढ़े लेकिन उसका हर कदम मजबूत होता है। वह रात को चैन की नींद सो सकता है क्योंकि उसे अपने फैसलों पर पछतावा नहीं होता। सिद्धांत केवल दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार तक सीमित नहीं है बल्कि खुद के प्रति ईमानदार होना भी एक सिद्धांत है। कई बार हम दुनिया को धोखा तो देते हैं लेकिन खुद से सच नहीं छिपा पाते। जब इंसान अपने मन की आवाज सुनता है और उसी के अनुसार जीवन जीता है तब भीतर एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। यही सच्ची खुशी है। आज के समय में सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया ने लोगों को बाहरी चमक की ओर ज्यादा आकर्षित कर दिया है। लोग दूसरों जैसा दिखने की कोशिश में खुद को भूलते जा रहे हैं। ऐसे समय में सिद्धांत इंसान को उसकी असली पहचान से जोड़कर रखते हैं। वे याद दिलाते हैं कि भीड़ में खो जाना आसान है लेकिन अपने मूल्यों पर टिके रहना ही असली ताकत है। सिद्धांतों का असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। एक सिद्धांतवादी इंसान अपने परिवार, दोस्तों और समाज पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। अगर माता पिता ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जीते हैं तो वह शिक्षा बिना शब्दों के अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती है। इसलिए सिद्धांत केवल व्यक्तिगत नहीं सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यह भी सच है कि सिद्धांतों पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी लोग मजाक उड़ाते हैं, कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन समय के साथ वही लोग उदाहरण बन जाते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं। इतिहास में जिन लोगों को याद किया जाता है उन्हें केवल उनकी सफलता के लिए नहीं बल्कि उनके सिद्धांतों के लिए याद किया जाता है। सिद्धांत इंसान को सीमित नहीं करते बल्कि उसे मजबूत बनाते हैं। वे जीवन में अनुशासन लाते हैं और सोच को स्पष्ट करते हैं। जिस व्यक्ति के पास सिद्धांत होते हैं वह हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है। वह दूसरों की नकल करने के बजाय अपने रास्ते पर भरोसा करना सीख जाता है। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व की पहचान बन जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सिद्धांत जीवन का बोझ नहीं बल्कि जीवन की असली ताकत है। समय बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन सिद्धांत इंसान को भीतर से स्थिर रखते हैं। जीवन में सब कुछ खोकर भी इंसान फिर से शुरुआत कर सकता है। लेकिन अगर वह अपने सिद्धांत खो दे तो खुद को खो देता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने सिद्धांतों को संभाल कर रखना सबसे जरूरी है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचक मुकाम सिंह चौहान थे। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए आप प्रस्तुत है खेती की बातें। आज बातें करेंगे गहरी जुताई के उपयोगी यंत्र की। वाचन है भारती उपाध्याय का।
2: किसान भाइयों के राम राम। किसान भाइयों, आज बात करांगा खेत में गहरी जुताई की। इना गर्मी का मौसम में अगर अपना के अपना खेत की जुताई करनी है तो अपन गहरी जुताई सारू कौन कौन सा यंत्र को उपयोग करी सका हाँ, जिका से अपनी जो खेत की जुताई है वह अच्छी तरह से हुई सके। एका सारू भाइयों अपना के चाहिए कि ट्रैक्टर से, जो ट्रैक्टर है ओका से चलने वाला बेहतरीन कृषि यंत्र में सब साइलर, एमपी प्लाऊ, मोल्ड बोर्ड, चीजल प्लो और डिस्क प्लाऊ शामिल है। अपन इनसे गहरी जुताई ट्रैक्टर की मदद से करी सका हाँ। सब साइलर की बात करा तो यह जमीन को बहुत गहराई तक फाड़ने वालों सबसे बेहतरीन यंत्र है। यो खेत की निचली सख्त परत जो है नी ओखे तोड़े है, जिका से पानी को जल स्तर बढ़ी जावे है और फसल की जो जड़ होन होवे नी वह गहराई तक एमे नीचे तक जावे है। तो अपन जो भी उपज लेवा वह नीचे तक जावे है, एको काम यो रेवे है। एमपी प्लाऊ इसे मोल बोल्ड हल भी केवे है। यह मट्टी की गहराई खे पलटी देवे है, मतलब उलट पलट करने को काम करे हैं, जिका से अपनी जो मट्टी है ओमे जो कीड़ा मकोड़ा और खरपतवार और फसल का जो अवशेष री जावे नी वे ऊपर आई जावे है और तेज जो घाम पड़ी रहे है उना घाम का कारण वे नष्ट हुई जावे है। मतलब यो घाम से और अपने अपने उलट पलट मट्टी के करी दी तो घाम का कारण ये सब मरी जावे हैं। यह 9 से 12 इंच तक की गहरी जुताई करने में सक्षम होवे है। चीजल प्लो की बात करा तो यो बहुत ही सख्त और सूखी जमीन की गहरी जुताई सारू उपयोग में काम में लियो जावे है। यो मट्टी के पलटे तो सही साथे जो जमीन होवे नी ओकी गहराई के भी फाड़ तो चलो जावे है, मतलब इका से अपनी मट्टी घनी अच्छी तरह से उलट पलट हुई जावे है। डिस्क प्लाऊ की बात करा तो यो भी कठोर और पतली मट्टी जो होवे नी ओका लिए घनो अच्छो होवे है। इमें लग्या हुआ डिस्क जो होवे नी तांबा का जो लग्या रेवे डिस्क जैसा वो मट्टी के आसानी से काटता हुआ गहरे जुताई को काम करे हैं। गहरी जुताई अपन जो करा वह हमेशा उच्च हार्स पावर वाला ट्रैक्टर की मदद से ही करना चाहिए। अपना खेत की मट्टी और ट्रैक्टर की क्षमता अनुसार ही अपना खेत सही यंत्र को उपयोग करना चाहिए कि जिससे अपनी जो खेत की मट्टी पलटवार है वह अच्छी तरह से हुई जावे। और खेत की अगर अपना के

0: गहरी जुताई करनी है तो अपन कल्टीवेटर को उपयोग भी जुताई सारू करी सकता हाँ, साथ ही साथ खरपतवार हटाने सारू भी कल्टीवेटर को उपयोग करा हाँ। यह यो जो अपनी जो सख्त मट्टी होवे नी ओके ढीलो करे है, बुवाई का पहला खेत खेत तैयार करने में कल्टीवेटर को काम करियो जावे है न, साथ ही खरपतवार नियंत्रण में भी इसकी मदद अपन ली सका हाँ। और फसल के जड़ जो फसल अपनी होवे है ओको जड़ को जो बेहतरीन विकास होवे है और साथ ही साथ ओके अनुकूलन वातावरण भी इन जो कल्टीवेटर है ओका से मिली जावे है। जुताई सारू एमपी हल जो होवे है वो भी अपन काम में ली सका है, यो भी एक प्रकार को कृषि कृषि हल उपकरण है जिसके मोल्ड बोल्ड हल का नाम से भी जानियो जावे है। एमपी हल को उपयोग मिट्टी के पलटने का लिए कियो जावे है, इसका उपयोग खेत की प्राथमिक जुताई मतलब खेत सारू जो पहला की जुताई करियो है नी ओका सारू काम में लिया जावे, बुवाई का पहला खेत की जुताई करीने मिट्टी के भूरो भूरो बनाने सारू इना हल को उपयोग करियो जावे है। खेती में उपयोग होने वाला जो कृषि यंत्र है वे ट्रैक्टर है जेके आधुनिक खेती का यो मुख्य आधार है, वह एको उपयोग खेत की जुताई बुवाई भारी सामान ढोने वाला अन्य उपकरण के चलाने का लिए काम में लियो जावे है। रोटावेटर की बात करा तो मिट्टी के भूरा बनाने सारू खेत समतल करने सारू एको उपयोग सबसे ज़्यादा करियो जावे है। सीड ड्रिल को की बात करा तो बीज बोने वाली यह मशीन है जो बीज के सही गहराई और समान दूरी में मिट्टी में डालने को काम करे है। और कल्टीवेटर जो है जुताई करने सारू और फसल के बीच में जो खरपतवार लागी जावे है ओके निकालने सारू एको उपयोग अपन करा हाँ। तो किसान भाइयों से आज इतना ही कहना थो, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें जिसमें आज आपने सुना गहरी जुताई के उपयोगी यंत्र, जानकारी दे रही थी भारती उपाध्याय। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वसुंधरा, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे मुश्किल नहीं अपने घर या प्रतिष्ठान में वर्षा जल संरक्षण संयंत्र लगाना। सुबह 7:35 पर सदाबहार फिल्मी संगीत लेकर हाजिर होंगे सुनहरे पल कार्यक्रम में। 8:30 पर सुनिए बच्चों के लिए कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे, जिसमें विश्व कछुआ दिवस पर जानकारी और बच्चों की कार्यक्रम प्रस्तुति होगी। साथ ही कविता, कहानी और रोचक जानकारियां आपको सुनाएंगे। कार्यक्रम होगा कल के सितारे बच्चे हमारे। सुबह 9:00 लोक संगीत में हम आपको सुनवाएंगे साधना उपाध्याय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। 9:15 पर लेकर हाजिर होंगे सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे सुजाता को उनके गीत। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में उस्ताद बड़े गुलाम अली का गायन सुनिएगा राग होगा तोड़ी। सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी लेकर हाजिर होंगे भोपाल केंद्र से, और 10:05 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। 12:00 प्रस्तुत किया जाएगा फिल्म संगीत, और 11:00 आप सुनेंगे हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:30 पर होगा कार्यक्रम संग्रहालय से, और 1:00 सुनिएगा महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर प्रस्तुत करेंगे सुगम संगीत। बच्चों के लिए कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे मुस्कान 2:30 पर। शाम की सभा का आरंभ होगा युवाणी के साथ शाम 5:00 से, जिसमें आज आप सुनेंगे युवा तरंग। 6:30 पर सुनिएगा सुगम संगीत में उमेश भट्ट को, और 6:45 पर लोक संगीत में आप सुनेंगे साधना उपाध्याय और साथियों के गाए कुछ और मालवी लोकगीत। खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा सुबह शाम को 7:20 पर हमेशा की तरह, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे कविता पाठ सुरेंद्र श्रीवास्तव का, और साथ ही लोक संगीत का आनंद लीजिएगा।

8 बजे सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा हमारे भोपाल केंद्र से और 8:15 से कार्यक्रम होगा डगर विकास का, जिसे प्रसारित किया जाएगा हमारे भोपाल केंद्र से डगर विकास की। 9:15 पर हमेशा की तरह सुनिएगा चित्र गीत और 9:30 पर पत्रों पर आधारित होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासीय संगीत सभा का प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, अभी आपने सुना आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकर अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं सम्प्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सह प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनम् पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणां एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते आईसीएफ इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय पूर्वीय मध्यप्रदेशाय विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे 3:30 मुम्बई इण्डियन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ता।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े पांचवें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया।

0: में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
4: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
5: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से।
1: आकाश

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। तुषार शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और जनमानस को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए प्रत्येक नगर में गीता भवन के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कल सिंगरौली महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सिंगरौली को प्रदेश का सबसे विकसित और आधुनिक शहर बनाने की घोषणा की।
1: हमने अपने बच्चों के प्रोत्साहन को देने के लिए उनके साथ भी समय बिताया। विकास के लगभग 550 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण किया। 1,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की स्वीकृति सिंगरौली में हुई है। आने वाले समय में सिंगरौली सुव्यवस्थित शहर में सबसे अच्छा शहर बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
0: इससे पहले डॉक्टर यादव ने 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पहले रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन आने वाले कुछ समय में यह रक्षा उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभरेगा। उन्होंने कल महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सांवली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
2: सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट more than 5,000 items की तैयार की है। हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं का 20,680 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू तुषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। टुषा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंच गई। इससे पहले आरोपी समर्थ सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशमी पर कल प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन ने समस्त जिलों में गंगा दशमी पर्व पर आयोजित गतिविधियों एवं कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा में और अन्य मंत्री जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शिवपुर में भी कल गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जिले भर में दीपदान, जल स्रोतों का पूजन, कलश यात्राओं के आयोजन के साथ रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी जिले के ग्राम कसीहवा में शॉर्ट सर्किट से हुए एक हादसे में 3 बच्चों की मृत्यु की घटना पर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि मृत बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला रेडक्रॉस सोसायटी सीधी की ओर से परिजनों को 20,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दे दी गई है। वहीं रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के सागौर ग्राम में कल 3 बालिकाओं की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वे गांव के पास एक कुएं पर नहाने गई थीं। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। रांची में 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नितिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नितिका ने 4.10 मीटर की शानदार छलांग लगाकर न केवल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया बल्कि एशियन गेम्स 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क भी हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने 9 से 12 जुलाई तक ऑर्डोस चीन में आयोजित होने वाली प्रथम एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नितिका आकरे को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आईपीएल में लखनऊ में खेले गए मुकाबले में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2:30 बजे और दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। गुना जिले में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में भेल दशहरा मैदान पर कल मशहूर संगीतकार एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। रहमान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खंडवा से होकर गुजरने वाली जयपुर और हैदराबाद के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अब स्थायी साप्ताहिक ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा। गुना के जिला पंचायत विश्राम गृह में 26 मई को युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्त्री रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स सम्मेलन

किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। तुषार शर्मा की मौत के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वसुंधरा।

0: कार्यक्रम वसुंधरा के सभी श्रोताओं को मिलिंद सुबेदार का नमस्कार। श्रोताओं, वसुंधरा कार्यक्रम में हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं और पर्यावरण का एक अभिन्न अंग होता है हमारा पीने लायक पानी, यानी कि पीने का पानी। और पीने के पानी के अलावा हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है अन्य कामों के लिए, जैसे कपड़े धोना, फैक्ट्रियों में पानी लगता है, खाना पकाने के लिए पानी लगता है। पानी के बिना हमारा जीवन बेकार है। लेकिन मुश्किल ये है कि अभी इन दिनों पानी को बचाने के लिए सरकार स्तर पे और हमारे बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पे भी हमें बहुत सारे प्रयास करने हैं, जिससे हमारा जो पीने के पानी की और जो अन्य कामों के लिए जो पानी की आवश्यकता पड़ती है वो वर्ष भर बना रहे। और इसके लिए क्या क्या व्यवस्था उपलब्ध है और कैसे हम वर्षा जल को रोक सकते हैं अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपने खेत में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान दुकान में, इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया अपने स्टूडियोज में श्रीमान सुरेश एमजी साहब को, जो कि नागरथ चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर से पधारे हमारे बीच में। तो सुरेश एमजी साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सुरेश सर, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि वर्षा जल संरक्षण के लिए कोई एक यंत्र आता है, यानी कि एक सिस्टम आती है, एक मशीन जैसी कोई चीज आती है जिसमें बारिश का पानी, हम छत से जो पानी गिरता है वो यूं ही नाले में बह के ना चला जाए, वो हमारे कुएं के आसपास कहीं या ऐसी जगह पे वो इकट्ठा हो जहां पे उसका हम, जैसे गर्मी के दिन है उसमें सदुपयोग करें और साल भर हमें पर्याप्त पानी मिलता रहे। ये क्या संयंत्र है, ये कैसी सिस्टम है?
1: मैं संयंत्र को बताने के पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा
0: जी,
1: कि हमारे जो जमीन का जो है, मालवा या इंदौर की बात जो करते हैं या धार की जो बात करते हैं, वो पूरे तरीके से बेसाल्ट है।
0: हाँ।
1: बेसाल्ट चट्टान, और यहाँ करोड़ों साल का इकट्ठा हुआ पानी हम लोगों ने चंद क्षणों में निकाल लिया।
0: ठीक।
1: उस पानी को जब हमने निकाला, हमने सोचा ही नहीं, हमारा करोड़ों साल का पानी कुछ क्षणों में ही निकाल दिया हमने, 3 या 4 साल में।
0: जी।
1: पहले एक बोरिंग था, अब धीरे धीरे इतने बोरिंग हो चुके हैं कि हमने पाताल तक पहुंच के पाताल का पानी निकाल लिया।
0: जी।
1: सरकार ने ये सोचा कि सब पानी निकाल तो लिया है, अब इसको क्या करें, इसको
0: अब
1: तो सरकार ने एक जल शक्ति मिशन बनाया। जल शक्ति मिशन का एक ध्येय था कि हमें पानी को बचाना। पानी को बचाना मूल इसलिए था कि हमारे हिंदुस्तान के 25 शहर जो डार्क जोन में आ गए थे, और इंदौर, उज्जैन, ये सब उस डार्क जोन में थे, कि आगामी कुछ साल में पानी खत्म होना था। एक कार्यक्रम बना कि जिसमें हमें पानी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ये समझना था। तो हमारा चूंकि बोरिंग की मात्रा काफी बड़ी मात्रा में है बोरिंग, तो बोरिंग का पानी निकालने के लिए तो एक बटन दबाना होता है, अब भरने के लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। हमने काफी स्टडी करने के बाद एक सिस्टम हमने डेवलप कराया अलग अलग लोगों से, कि एक जो सिस्टम होता है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग फिल्टर कहते हैं। पहले के जमाने में होता था कि एक बड़ा ड्रम में छेद करके पानी डालते थे और उसको जमीन में उतार देते थे, ये भी होता था। उसके बाद एक सिस्टम बना कि पिट बनाते थे एक बोरिंग के पास में, एक
0: गड्ढा
1: 4x4 का एक गड्ढा बना के उसमें ऊपर से पानी उतार देते थे। लेकिन उसमें एक समस्या मूल ये थी कि जैसे हमने पानी उतारा, क्योंकि बेसाल्ट है, चट्टानों की आड़ी लेयर है हमारे भूगर्भ की, नीचे की मालवा क्षेत्र की, बेसाल्ट होने के कारण, तो उसमें क्या होता है कि 10 फीट में पानी नीचे जाता, उसके बाद कहां जाता हमें पता नहीं लगता, उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो रहा था। हम लोगों ने एक फिल्टर डेवलप कराया जो कि 1000 स्क्वायर फीट का, 1500 स्क्वायर फीट का, 2000 स्क्वायर फीट का, इसमें भी अलग टाइप के फिल्टर्स लगे हुए थे, उसको फिल्टर बोलते हैं, अलग अलग कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने लगी अभी। तो वो फिल्टर को हम लोग स्टेब्लिश करते हैं, जो छत का पानी हमारा बाहर निकलता उस ड्रेनेज के में एक बीच में फिल्टर स्टेब्लिश करते हैं, और फिल्टर से पानी पूरी तरीके से छनता है और बोरिंग में सीधा उतरता है। 600, 800, 500 जितना भी है उसमें सीधा उतर के हमारे जमीन के एक्वीफर को बढ़ाता है वो।
0: ठीक। तो जो बरसों से हमने पानी को उलीच दिया है, उस पानी को वापस भरने की जो व्यवस्था है वो इसके अंतर्गत हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो वर्षा काल में जो पानी आता है, जो छत से बह जाता है, वो हमारे जो पानी का जो स्रोत है, उस स्रोत में हम सीधे उस पानी को छोड़ देते हैं। तो इसके लिए पाइप की जरूरत पड़ती होगी, कुछ एल्बो जॉइंट की जरूरत पड़ती होगी, और वो जो पानी का जो सोर्स है वो काफी गहरे रहता है, 300 फुट 400 फुट, तो वहां उस गहरे तक के पानी को कैसे उतारना?
1: देखिए, हम लोग जो बोरिंग करते हैं उसमें एक 800 फीट का बोरिंग होता है, तो एक 40 फीट का केसिंग होता है उसमें, वो पूरी तरीके से एक गड्ढा रहता है नीचे तक का,
0: केसिंग रहती है।
1: उसके पहले मैं एक चीज बहुत जरूरी समझाना चाहूंगा, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का मकान है तो कम से कम एक बारिश जो 33 mm की बारिश गिरती है उसमें 1,00,000 लीटर पानी आता है हमारी एक छत पे।
0: जी।
1: एक छत पे अगर 1500 स्क्वायर फीट की छत है तो मान के चले 1.5 लाख लीटर पानी आता है। जो हमें इस पानी की समस्या से निदान कराने के लिए एक घर के लिए काफी होता है।
0: कितने सालों के लिए?
1: काफी सालों के लिए। अगर हमने हर साल पानी बहुत होता है तो हमें जो जमीन में 800 फीट जो पानी है वो धीरे धीरे धीरे करके ऊपर आता जाएगा।
0: जी,
1: मूल चीज ये थी, हम केसिंग के पास में एक गड्ढा करके वो हम फिल्टर का पानी सीधे उसमें छोड़ देते हैं, केसिंग में छेद करके, तो धीरे धीरे बूंद बूंद करके नीचे जाता रहता है और सीधे जमीन के जो तालाब है या स्रोत है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाता है।
0: वो रिचार्ज करता,
1: ये सिर्फ रिचार्ज करता ही नहीं है, ये पर्यावरण का संतुलन भी करता है और हमारे आसपास के मॉइस्चर भी डेवलप करता है, जिससे आप देखेंगे इंदौर में जिस तेजी से हमने काम किया, आने वाले सालों में जो हम 50 डिग्री पे पहुंच गए हैं गर्मी, वो निसंदेह सिर्फ इस काम के बाद 10 डिग्री तक नीचे आना है।
0: 10 डिग्री तक नीचे आना तय है।
1: तय है।
0: अब ये बताइए कि हम जो आम जो लोग हैं जिनका सरकारी किसी डिपार्टमेंट से सीधा कोई संबंध नहीं है, सिर्फ इतना संबंध है कि साल में एक बार जाके अपना टैक्स भर दो, इसके अलावा कोई संबंध नहीं है, तो हम अपने घर या अपनी फैक्ट्री, अपने मकान, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, उसके आसपास हम पानी की रिचार्जिंग करने के लिए हमें क्या व्यवस्था करनी होगी और कितना खर्च आएगा?
1: देखिए, अगर आप इंदौर नगर निगम के परिक्षेत्र में रहते हैं
0: जी,
1: तो एक 311 ऐप होता है नगर निगम का,
0: 311
1: ऐप रहता है
0: इंदौर नगर निगम,
1: इंदौर नगर निगम ने, जिसमें शिकायतें समाधान सब होता है उसमें, उसमें एक बिंदु रहता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप उसको दबा के अपना डिटेल भर दें, तो एक सिस्टम से एक आदमी आपके आएगा, आपको बताएगा ये करना है। उसमें फिलहाल इंदौर नगर निगम का परिक्षेत्र है और बाकी एक 2.5 से 3 हजार रुपए का आपको पाइप एल्बो ये खर्चा आता है और करीब 1 हजार रुपए आपका प्लम्बर का खर्चा आता है, तो 3 से 4 हजार रुपए आपको लगना है। ज्यादा से ज्यादा आपका 2 मंजिला घर होता 5 हजार रुपए लगना है। इसमें आपके घर पे 100% लाखों रुपए का पानी जो कि इतना शुद्ध रहता है जितना गंगा का पानी शुद्ध रहता है, उतना पानी

0: आपकी जमीन में पहुंच जाएगा। और मुख्य चीज ये है कि जो हम वर्षा जल रहता है वो 30 TDS का होता है, और आज की तारीख में आप किसी भी बोरिंग का पानी निकाल के देखिएगा वो 1000 TDS का होता है
1: जी।
0: तो इससे शुद्ध कोई पानी दुनिया में
1: शुद्ध कोई पानी नहीं होगा। गंगा जल भी शायद ही इससे शुद्ध हो,
0: इतना शुद्ध रहता है।
1: तो न सिर्फ हमें पीने का पानी मिलेगा बल्कि आसपास की जो जमीन है उसमें नमी बढ़ेगी, नमी बढ़ने से पेड़ पौधे उगने का अनुकूल वातावरण उत्पन्न होगा, और ये जो 45 से 50 डिग्री जो गर्मी में टेम्परेचर हो जाता है वो घटके 8-9 डिग्री तक के कम होने की पूरी पूरी संभावना दिख रही है। बल्कि इसी गर्मी से इंदौर के आसपास हमें 40 से 45 के बीच में ही टेम्परेचर आएगा, ये इतना लाभ वाली बात है ये। अब इंदौर की तो बात आपने कर दी, हमारा प्रसारण सुना जाता है उज्जैन, नीमच, मंदसौर, धार, खंडवा, खरगोन, यहां रहने वाले जो लोग हैं वो तो इंदौर नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आते हैं, वो इसके लिए क्या करें?
0: सीधी सी बात है कि आजकल अगर हर जैसे खरगोन की बात अलग है, जो हमारा मालवा इलाका था ये बेसाल्ट है, तो बेसाल्ट में चट्टानों के नीचे सीधे बोरिंग हुआ है, तो हम उसमें सीधे बोरिंग उतार सकते हैं फिल्टर के माध्यम से। फिल्टर अब धीरे धीरे करके पूरे बाजार में उपलब्ध होने की स्थिति में आ गए। और दूसरी बात करें हमारे खरगोन और धार इन क्षेत्रों की बात करें, यहाँ का एक बेसिक तरीका एक ही है कि हम लोग पायल होता है, एक 20 फीट का ट्रैक्टर से पायल होता है और एक हाथ से पायल होता है, दो सीधे छेद होते हैं,
1: उसमें चूड़ी जैसी घूमती है,
0: चूड़ी जैसी घूमती है
1: वो छेद, उसमें
0: काली मिट्टी निकाल के मुरम तक निकाल लेता है वो 10 फीट तक का। ऐसे 2 10 फीट के पायल कराए, उसमें परफोरेटेड मतलब छेद वाले पाइप डालें 4 इंच के दोनों साइड पे, और ऊपर बंद करके उसमें थोड़े से पत्थर डाल दें, और जो बारिश का पानी आता है सीधे उसमें उतार दें।
1: अच्छा,
0: क्योंकि हम बोरिंग के आसपास करा लें, तो चूंकि 10 फीट के नीचे पानी जाएगा तो एक पानी के सीजन में अगर हम लोग डायरेक्ट फिल्टर करके 1 लाख लीटर उतारते हैं तो कम से कम 50 से 60 हजार लीटर पानी सीधा आपके जमीन में उतरेगा, बोरिंग को फायदा देगा, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, हम पिट बनाए, 4x4x4 का एक पिट बनाए, सबसे नीचे बड़े पत्थर रखे, बड़ा गड्ढा बनाए और अलग अलग लेयर में बड़े पत्थर सबसे नीचे, छोटे छोटे करते ऊपर लाएं, उसमें भी बारिश का पानी सीधे उतार दें। तो ये होना है उसमें, अगर हमारा पूरा शहर, पूरा जिला, पूरा गांव एक साथ पानी उतारेगा, अब मान के चले उनके कुओं में एक साल में फर्क उनको खुद ही देखने को मिलेगा।
1: तो पत्थर लगाने से, अलग अलग साइज के पत्थर लगाने से वो पानी
0: नेचुरल फिल्टर हो जाता है।
1: अच्छा, वो नीचे जमीन में उसी जगह पहुंच जाता है,
0: उसी जगह पहुंच जाता
1: है, इधर उधर नहीं बहता,
0: इधर उधर नहीं फेंके जाता है। तो उसमें नेचुरल ग्रेवर्स डालना पड़ते हैं अलग अलग साइज के, जिससे पानी सीधा मिल जाता है।
1: जी, ये तो आपने बताया कि इस तरह से इंदौर के अलावा जो क्षेत्र हैं वहां पे होएगा खर्चा। आपने हमें बताया सुरेश सर कि हद से हद 5000, ज्यादा 5 से 5.5-6 हजार।
0: देखिए शहर का खर्चा आते, गांव में तो हम लोग खुद अपने गड्ढा करके आसपास से पत्थर बीन के भी डाल सकते हैं। अगर गांव की बात करें तो गांव में सबसे ज्यादा परेशानी गांव की महिलाओं को आती है कि जो पानी लेने किलोमीटरों तक जाती है, कुएं में पानी नहीं रहता है। तो सबसे पहले हर गांव को एक मुहिम बनाना चाहिए कि हमारे गांव का पानी अपने गांव में रुके, अपने खेत का पानी अपने खेत पर रुके। वो ये भी कर सकते हैं कि खेत के जितने स्लोप बने हैं वहां एक बड़ी बड़ी कुंडिया बना दे 5 फीट की 10 फीट की, और अपने गांव का पानी पड़ोस के गांव तक या बाहर तक जाने ना दें। जितना पानी अगर उतार देंगे तो बमुश्किल से आप एक साल में रिजल्ट ही आएगा कि अपने गांव की माओं को, बहनों को पानी लेने दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा,
1: या 3-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर
0: बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। हमारे गांव का पानी रोक लेंगे तो स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और काफी चेंजेस दिखेंगे।
1: बहुत अच्छी बात बताई सुरेश जी साहब। हमारे जो कार्यक्रम का जो समय है वो पूरा होने को है, और आपने आज इस विषय पे हमें मार्गदर्शन दिया। मुश्किल नहीं अपने घर या प्रतिष्ठान में वर्षा जल संरक्षण संयंत्र लगाना, तो आपने 5 से 6 हजार तक की लागत बताई, ये तो शहरों की बात की, लेकिन गांव में इससे भी कम लागत में हो जाएगा, क्योंकि पत्थर, मिट्टी, मुरम ये गांव में तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, शहरों में थोड़ा इसका कीमत इसकी चुकानी पड़ती है। और नगर निगम के जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर पे, या आप नगर निगम या नगरीय निकाय में आप संपर्क करें तो आपको वर्षा जल संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था करनी है उस पर आपको मार्गदर्शन नगरीय निकाय से मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है
0: तो 6.5% की छूट,
1: संपत्ति कर में भी इसमें छूट मिलती है, तो आम के आम और गुठली के दाम।
0: बिल्कुल।
1: तो आज वसुंधरा कार्यक्रम में श्रीमान सुरेश एमजी नागरथ चैरिटेबल ट्रस्ट से आज हमारे स्टूडियो में आए हमारे बीच में पधारे, आपको आकाशवाणी इंदौर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद जी।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। और आरंभ करते हैं दिल तेरा दीवाना इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत रचना शैलेंद्र की है।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना दिल तेरा दीवाना फिल्म का गीत।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब सुनहरे पल में आपको सुनवा रहे हैं छाया फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ है। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत सलिल चौधरी का।

फिर कब मिलोगी। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत है आर डी फरमन का।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर।
2: बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

लता मंगेशकर की आवाज में सुमधुर गीत आप सुन रहे थे इशारा फिल्म से। इस गीत को लिखा था मशरूर सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में एस जी वर्मन का लिखा हुआ गीत ज्वलती फिल्म से। आइए सुनें।

0: परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
2: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्व

0: में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
5: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही हैं।

0: समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against four accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal, including reopening of Strait of Hormuz, largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinder Veer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
4: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
3: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared US perspective on various regional and global issues including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President, Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing Company, Jeff Shockey, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, skilling, supply chains, innovation and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendras in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts, as well as a new AIIMS for North Bengal, have also

0: As Iran deal, including reopening of Strait of Hormuz, largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinder Veer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना।
2: यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे।
3: कल के सितारे बच्चे हमारे। कल के सितारे बच्चे हमारे।
4: कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम में स्वागत है बच्चों आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी दीदी। बच्चों आप सभी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। इन छुट्टियों का सदुपयोग समर कैंप ज्वाइन करके कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, समर कैंप व्यक्तित्व विकास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक कौशल और नई रुचियां जैसे कला, खेल, विज्ञान को विकसित करने का एक बेहतरीन माध्यम है। बच्चों ये आपको डिजिटल दुनिया से दूर रखकर रचनात्मकता और प्रकृति से जोड़ते हैं। क्या सोच रहे हैं? यही ना कि समर कैंप ज्वाइन कर लें। बिल्कुल कर लें, नए दोस्त बनेंगे, टीम वर्क से समूह में संवाद करने की क्षमता विकसित होगी, बहुत मजा आएगा। बच्चों एक और विशेष बात, इन छुट्टियों में आप पानी वाले स्थानों पर घूमने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि नदी में, बोटिंग के दौरान, क्रूज स्टीमर में लाइफ जैकेट जरूर पहने, ये डूबने से बचाती है। आपातकालीन स्थितियों में शरीर को पानी के ऊपर रखती है बच्चों, और श्वसन नली को सुरक्षित रखकर जान बचाती है। हाँ,

आज के कार्यक्रम में हमने शामिल किया है कुछ ऐसे मेधावी होनहार बच्चों को जो आपके साथ रोचक ज्ञानवर्धक बातें

0: साझा करेंगे, तो आइए होते हैं उनसे रूबरू।
1: कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम में स्वागत है दोस्तों आपका। मैं प्रिशा चौहान कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ।
2: और मैं परिणीति लालवानी कक्षा 3वीं की छात्रा हूँ। दोस्तों हमारे साथ और भी साथी है जो इस कार्यक्रम को और मजेदार बनाएंगे, आइए हम उनसे आपको परिचय करवाते हैं।
3: मैं ज्ञाना वशिष्ठ कक्षा 3वीं की छात्रा हूँ।
4: हेलो दोस्तों, मैं हनिका चावला कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ।
1: आइए दोस्तों अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कल हमने कछुआ दिवस मनाया था। चलो कुछ कछुए की रोचक जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों हमने 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया था। आपको बताना चाहूंगी कि कछुए डायनासोर के युग से भी पहले मौजूद थे और वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसलिए वो अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए धूप में रहते हैं। अधिकांश कछुए शाकाहारी होते हैं दोस्तों, जो घास पत्तियां और फल खाते हैं। और दोस्तों अब हनिका भी आपको कुछ कछुए की जानकारी दे रही है।
4: दोस्तों कुछ कछुए पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ कछुए कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। दोस्तों कछुए बहुत लंबे समय तक जीते हैं, इनकी उम्र 150 वर्ष होती है।
0: मैं देख रही हूँ कि परिणीति भी कुछ कछुओं के बारे में जानकारी देना चाह रही है ना परिणीति?
2: हाँ दोस्तों अब सुनो ध्यान से। मादा कछुए जमीन में गड्ढा खोद के अंडा देती है और उनसे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। जमीन पर जो रहते हैं उनके पैर हाथी जैसे होते हैं। टर्टल पानी में रहते हैं, उनके पैर चप्पू जैसे होते हैं।
0: कियाना आप अपने दोस्तों को कछुए के बारे में कुछ बताना चाहोगी?
3: हाँ दोस्तों कछुए का शरीर बहुत मजबूत रहता है, उसके ऊपर एक हेल होता है जो उसका कवच होता है। खतरा होने पर वो उसके पैर और सिर को उसके अंदर छुपा लेता है। धीमी चाल से चलते हैं ये, लेकिन लगातार चलने के कारण अपनी लंबी यात्रा पूरी कर लेते हैं। कहानी तो याद होगी आपको दोस्तों, कछुआ जीत गया था। चलो सुनते हैं कहानी प्रिशा दीदी से।
1: चलिए दोस्तों अब सुनिए कहानी। एक समय की बात है, कछुआ और खरगोश की रेस होती है। उसमें कछुआ तो धीरे चलता था, लेकिन जब खरगोश तेज भाग रहा था तो खरगोश ने सोचा कछुआ तो बहुत पीछे है अभी मुझसे, चलो एक पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। वो सोता रहा और कछुआ चलता रहा अपनी मंजिल की ओर। वो बिल्कुल नहीं रुका दोस्तों, अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। फिर खरगोश की नींद खुली और फिर वो भागता हुआ गया और उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही जीत चुका है, क्योंकि कछुआ रुका नहीं और वो अपनी मंजिल की ओर चल रहा था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि जो हमने लक्ष्य तय किया है उसे बिना रुके पूरा करना है और कभी भी घमंड नहीं करना है, किसी को कमजोर नहीं समझना है। कैसी लगी ये कहानी आपको?
5: बहुत अच्छी कहानी।
2: बहुत अच्छी कहानी सुनाई प्रिशा दीदी ने हमें।
1: दीदी कहानी तो हमने सुन ली, चलो अब एक गीत सुनते हैं।

0: तो आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय भाई दिवस। इस दिवस को बनाने का उद्देश्य भाइयों के रिश्ते को सम्मान देना है, विशेष रूप से भाइयों से प्यार करना है। मैं तो अपने भाई का रिस्पेक्ट करती हूँ और प्यार भी करती हूँ। वो मुझसे बड़े हैं तो मैं उनका कहना मानती हूँ।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं भी अपने भाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाती हूँ। मेरे भैया और जो बड़े वाले हैं वो मेरा ध्यान भी बहुत रखते हैं। हम दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मेरे बड़े भाई करवाते हैं और वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं।
2: हाँ दोस्तों, हमारे भैया भी हमारा ध्यान रखते हैं और हम उनको बहुत प्यार करते हैं।
1: दोस्तों, हमारे भैया एक गीत गाते हैं हमारे लिए।
3: कौन सा गीत प्रिशा?
1: फूलों।

0: का कहना है।
1: दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां लग गई है और हम लोग तो बहुत मजा ले रहे हैं गर्मियों का। मैं देख रही हूँ कि हनीका अभी जस्ट अपनी क्लास से आई है और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ सूरज है। चलिए पूछते हैं उसने क्यों बनाया है सूरज। हनीका बताओ।
2: मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं अपने दोस्तों को कविता सुनाने जाती हूँ। सूरज अभी बहुत चमक रहा है, हमें बहुत गर्मी लग रही है दोस्तों। चलिए आपको कविता सुनाती हूँ। गर्मी के दिन आते हैं हमको बहुत सताते हैं। कहाँ खेलने जाएं हम, तेज धूप में निकल रहा दम। खेल का मैदान गरम, लू को आती नहीं शर्म। कहीं चैन न पाते हम, मन ही मन झुंझलाते हम। गर्मी के दिन आते हैं, हमको बहुत सताते हैं। क्यों सही कहा ना दोस्तों मैंने?
3: हाँ, एकदम सही कहा। इस गर्मी ने तो बहुत परेशान कर रखा है।
1: लेकिन एक राज की बात बताओ दोस्तों, कि गर्मी में बर्फ का गोला, आइसक्रीम, कुल्फियाँ बहुत खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत ठंडी रहती है और गर्मी तो बहुत गर्म करती है हमें। तो अगर ठंडी चीज खाएंगे तो बहुत हमें अच्छा लगेगा। तुम लोग खाते हो बर्फ का गोला दोस्तों?
4: हम बर्फ का गोला खाते हैं।
5: बच्चों, गोले की बात हो रही है तो चलिए परिणीति से पूछते हैं कि क्या बर्फ का गोला बनाना परिणीति को आता है।
1: हाँ, मेरे को आता है, पर मेरी दादी भी मेरे को थोड़ी सी मदद करती है। मैं बताती हूँ कैसे। मेरी दादी ना मेरे को बर्फ कूट के देती है और फिर मैं उसे एक गिलास में डाल के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर। फिर जब मैं बाहर निकालती हूँ तो मेरे पास दो शरबत के फ्लेवर होते हैं, एक खसखस शरबत और एक रूह अफ़ज़ा शरबत। तो मेरे को जो शरबत पसंद है मैं डालती हूँ और फिर मेरी दादी और मैं झूले पे बैठ के हम लोग खाते हैं और हम मस्ती करते हैं। प्रशा, आपको आता है बनाना?
4: हाँ, मुझे आता है बर्फ का गोला बनाना। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले मैं बर्फ कूटती हूँ, उसके बाद मैं उसमें मेरे फेवरेट शरबत डालती हूँ। मेरे पास तीन शरबत हैं, गुलाब का शरबत, खसखस और काला खट्टा। मैं कूटी हुई बर्फ में डालती हूँ, फिर मैं फ्रीजर में रख देती हूँ और फिर मैं और मेरी छोटी बहन उसको खा के खेलते हैं और मेरी दादी हमारे साथ बैठती है और हमको वो बहुत सारी स्टोरी सुनाती है। एक बात और बताना चाहूंगी दोस्तों, अभी ना मैं नानी के घर जाने वाली हूँ, मुझे वहाँ का ही सबसे अच्छा बर्फ का गोला लगता है।
5: क्यों लगता है प्रिशा, ऐसी क्या खास बात है, अपने दोस्तों को बताओ।

0: बर्फ का गोले में मैं 3 शरबत डलवाती हूँ, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक। यहाँ पे जब हम ग्रीन कलर बोलते हैं तो वो हमको दौर में सारे मीठे शरबत होते हैं। वहाँ पे एक भैया आते हैं जो अपने नेचुरली फ्लेवर्स बनाते हैं, तो जब मैं उनको ग्रीन कलर बोलती हूँ, काला खट्टा और रोज और जो कैरी है उसका शरबत बनाते हैं, और जो कच्चा आम है कैरी वो भी नेचुरल ही बनता है वहाँ पे। यहाँ पे सब मीठे शरबत होते हैं, तो मुझे ज्यादा मीठा नहीं पसंद, तो मुझे खट्टा मीठा दोनों पसंद है, इसे मुझे स्पेशली बुरहानपुर का गोला पसंद है। दोस्तों जब भी आप बुरहानपुर जाए वहाँ के बर्फ के गोले का आनंद लें। मैं देख रही हूँ कि कियाना के हाथ में एक ड्रॉ वाली आइसक्रीम है, चलो पूछते हैं उसने क्यों ड्रॉ करा है। बताओ कियाना दोस्तों को।
1: मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है और मेरी मम्मी हर रोज मेरे लिए आइसक्रीम बनाती है। जब वो खत्म हो जाती तो मेरी मम्मी और मैं और आइसक्रीम बनाते हैं। मेरे को आइसक्रीम खाना पसंद है, इसीलिए मैंने ड्रॉ किया है। इसमें 3 फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और बटर स्कॉच। और जब मैं बुआ के घर जाती हूँ जब मैं ये बहुत खाती हूँ, बुआ मेरे लिए बनाती है बहुत अच्छी। दोस्तों आप भी आइसक्रीम पसंद करते हैं ना, गर्मियों में तो अच्छी लगती है।
2: हाँ कियाना, हम सबको आइसक्रीम पसंद है।
0: दोस्तों अब मैं आपको बर्फ के गोले पे एक कविता सुना रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। गोले वाला आया बर्फ के गोले लाया, लाल पीले हरे गोले, मीठे मीठे ठंडे गोले, चलो चलो जीप चलाओ, गर्मी को दूर भगाओ। चॉकलेट टपक रहा है भाई, स्ट्रॉबेरी महक रहा है, रंग रंग में स्वाद भरा, रंग रंग में स्वाद भरा, गोला सबको कितना प्यारा, देखो कितना प्यारा शोला। छोटू बबलू पिंकी गोलू खाए, मस्ती में सब झूम जाए, छोटू की सबसे मस्ती भारी, लगती हम सबको प्यारी। गोले वाला आया बर्फ के गोले लाया। दोस्तों इन दिनों बहुत सारे फल आ रहे हैं, जैसे कि आम, तरबूज, खरबूज, और मेरी मम्मी गर्मियों में केरी का पना भी बनाती है। चलिए हम अब फलों के राजा आम के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आम भारत का राष्ट्रीय फल है। ये रसीला और विटामिन से भरपूर होता है। ये 5000 साल पुराना है दोस्तों। इसमें दशहरी, लंगड़ा, बादाम, तोता परी, लाल पट्टा भी होता है। मुझे बहुत पसंद है आम। आम में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण होते हैं दोस्तों, और आप सभी आम जरूर खाइएगा।
3: दोस्तों मेरे को मैंगो शेक बहुत पसंद है, और साथ ही साथ मेरी दादी आम का रस बनाती है जो मेरे भाई और मेरे को बहुत पसंद है, और मेरी मम्मी भी बनाती है उसे। और अगर हमारे पास मैंगो होते हैं ज्यादा तो मेरी दादी आम पापड़ी बनाती है। दोस्तों होममेड चीजें बहुत अच्छी होती है।
0: और दोस्तों मेरी दादी ना आम की लस्सी भी बनाती है, बहुत टेस्टी लगती है मुझे और मेरी छोटी बहन को। दीदी मैं अपने दोस्तों को फलों के राजा आम के ऊपर एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
2: सुनाओ।
0: सभी फलों का राज आम सबसे ऊंची इसकी शान, जब होते हैं खट्टे कच्चे बड़े चाव से खाते बच्चे, इन्हें देखकर कोयल आती मधुर मधुर है गीत सुनाती, लाल पट्टा और दशहरी इसके है कितने ही नाम, सभी फलों का राजा आम, मीठा रसीला पीला आम, जो चाहे सब खाए आम, सबका जी ललचाए आम, सभी फलों का राजा आम सबसे ऊंची इसकी शान। दीदी हम एक गीत सुनना चाहेंगे छुट्टियों पर। कोलम्बस कोलम्बस छुट्टी है आई।

0: दोस्तों, अभी गर्मियों की छुट्टियां है तो आप उसका आनंद कैसे ले रहे हैं?
1: हम कैसे ले रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं।
0: हम सभी एक मल्टी में रहते हैं।
2: हाँ दोस्तों, हमारी मल्टी में एक स्विमिंग पूल है और गार्डन है। इधर हम शाम को बहुत मस्ती करते हैं। कभी कभी स्विमिंग पूल गंदा होता है तो हम गार्डन में खेलते हैं, और जब वो साफ होता है हम पूल पार्टी करते हैं। इसी तरह हम लोग गर्मियों की छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। हम सब बच्चे मिलकर रोज एक नई एक्टिविटी करते हैं। तो आज हम जब शाम को मिलेंगे तो कहानियाँ सुनाएंगे, और वैसे भी जब हमको दिन में खेलना होता है तो फिर हम हमारे दोस्त के घर जाते हैं और दिन में हम इंडोर गेम खेलते हैं। जब मेरे दोस्त घर आते हैं तो मेरी मम्मी एक ठंडा शरबत तैयार करती है, केरी का पन्ना बनाती है, लू नहीं लगती, हम सब पीते हैं इसे और बहुत आनंद लेते हैं इनका। तो आपको पता है कि हम शाम को साइकिलिंग भी करते हैं, दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और इस तरह दोस्तों हम अपनी छुट्टी का आनंद लेते हैं। हमारे दो जो दोस्त है वो लोग जिमनास्टिक क्लास जाते हैं, मैं योगा क्लास जाती हूँ, और एक और हमारे साथ जाती है जो ड्राइंग क्लास जाती है, और प्रिशा बहुत अच्छा चेस खेलती है। कल हमने जो चेस खेला था उसने मेरे को बहुत जल्दी से हरा दिया था, उसने मेरा राजा जल्दी से ले लिया था।
3: कितने अच्छे से आप लोग गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं बच्चों। चलो प्रिशा से जानते हैं कि वो चेस कब से खेल रही है।
1: दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं चेस कब से खेल रही हूँ। मुझे बस अभी एक महीना हुआ है चेस खेलते खेलते। दोस्तों, मैं जिमनास्टिक्स करती हूँ और मेरे साथ एक और फ्रेंड है जो जिमनास्टिक्स करती है, उसका नाम है कियाना।
4: जिमनास्टिक्स में अभी मैं बैकफ्लिप और फ्रंट साल्टो सीख गई हूँ। मेरे दो चीजें मुझे बहुत पसंद है जिमनास्टिक्स में। जिमनास्टिक्स में वैसे तो चार चीजें होती है लड़कियों के लिए, बीम, बार, फ्लोर और वॉल्ट। मुझे सबसे ज्यादा फ्लोर और बार पसंद है, और मैं अभी बार पे हैंग करना सीख गई हूँ और फ्रंट रोल और बैक रोल दोनों सीख गई हूँ, और मैं फ्लोर पे अभी बैक फ्लिप और फ्रंट साल्टो सीख रही हूँ। मेरे जिमनास्टिक्स में फेवरेट है दीपा कर्माकर और सुनीली। सिमोन बायल्स 7 या 8 सालों से ओलंपिक गोल्ड जीत रही हैं, और सुनीली बार्स पे बहुत अच्छी है, और मुझे वो दोनों बहुत पसंद है। दीपा कर्माकर इंडिया की फर्स्ट जिमनास्टिक प्लेयर है। मैं भी बड़े होके इन सबकी तरह बनना चाहती हूँ।
5: हमारी शुभकामनाएं है प्रिशा।
1: कियाना, तुम भी जिमनास्टिक करती हो, बताओ अपने दोस्तों को।
6: हाँ दोस्तों, मैं पिछले साल से जिमनास्टिक्स कर रही हूँ। मैं बैकफ्लिप सीख गई हूँ अभी तक। आगे मुझे बहुत बड़ा बनना है, देश का नाम रोशन करना है, इसलिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। जिमनास्टिक्स और ड्राइंग अच्छा लगता है।
1: दोस्तों, चलो अब सुनते हैं निका से उसकी कविता।
7: दोस्तों, मेरी कविता का टाइटल है समय। समय का जो रखता ध्यान जग में होता उसका नाम, समय को जो खोता है बाद में रोता है, समय कभी नहीं रुकता चलता है बस चलता है, सफल वही यहाँ रहता है समय के साथ जो चलता है, समय के साथ जो चलता है। दोस्तों, हमेशा समय के साथ चले आप अपनी मंजिल को पा लेंगे।
1: दोस्तों, अभी हमने कविता समय पर सुनी, वो कितनी अच्छी थी। और देखो, समय इशारा कर रहा है, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का रोचक, ज्ञानवर्धक, रंग भरा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा।
3: बच्चों, इस वादे के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। दुर्गेश नंदिनी दीदी को दे अनुमति। टाटा बाय बाय।
5: टाटा बाय बाय।
3: बच्चों, जय हिंद।
5: जय हिंद।
8: कल के सितारे बच्चे हमारे, कल के सितारे बच्चे हमारे।
9: अभी आप लोगों ने सुना कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं साधना उपाध्याय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। आइए करते हैं आरंभ।

साधना उपाध्याय और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे आज लोक संगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं सुजाता वैश्वपायन के गाए भजन। आइए आरंभ करते हैं इनके गाए गुरु भजन के साथ, जिसे लिखा है गोरक्षनाथ ने।

सुजाता वाशमपाइन की आवाज़ में आप सुन रहे थे गुरु भजन। आइए इन्हीं के स्वर में सुनते हैं नारायण स्वामी रचित ये भक्ति गीत।

सुजाता वैशंपायन की आवाज़ में आज आप सुन रहे थे भक्ति गीत। इसी के साथ सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन, राग है तोड़ी। आइए सुने शास्त्रीय संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन राग था तोड़ी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है।

दतिया जिले की चिट्ठी, आलेख मनोज गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। दतिया जिले में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और दोपहर के समय सन्नाटा छा जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा ने बताया है कि अत्यधिक गर्मी और लू जानलेवा हो सकती है। गर्मी के दिनों में धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद और हल्के रंग के ढीले सूती वस्त्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन करके एवं पानी पीकर ही घर से बाहर निकले। बाहर जाते समय भी अपने साथ पानी रखें और गर्मी के दिनों में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्हें धूप में घर से बाहर न निकलने दें और समय समय पर पानी पीने के लिए प्रेरित करें। दतिया जिले में युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन कल किया जाएगा। युवाओं से दस्तावेजों के साथ इसमें शामिल होने की अपील की गई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में जिले की कानून व्यवस्था के संबंध में 28 मई को एक बैठक का आयोजन भी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा वृद्धजनों के सम्मान, मनोरंजन, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल जिले में की गई है। रेडक्रॉस भवन में संचालित आनंद घर डे केयर सेंटर में वृद्धजनों के लिए सप्ताह के सातों दिन अलग अलग विभागों के समन्वय से विभिन्न रचनात्मक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा रतनगढ़ माता मंदिर रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक जांच और छापामार कार्यवाही बीते दिनों की गई। टीम के द्वारा संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान कई वाहन चालकों द्वारा खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। वे बिना अनुमति और बिना वैध परिपत्र के खनिज का अवैध परिवहन, उत्खनन और भंडारण कर रहे थे। अभियान के दौरान प्रशासन की टीम ने ग्राम इंदरगढ़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1500 घन मीटर रेत जब्त की। बाद में इन अवैध रेत भंडारों को नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई। दतिया स्थित जिला जेल में मुलाकात कक्ष में लीगल एड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। स्थापित हेल्प डेस्क में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक लीगल एड डिफेंस काउंसिल में नियुक्त अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हेल्प डेस्क में नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा मुलाकात कक्ष में बंदियों के परिजनों को मौके पर ही कानूनी सलाह और सहायता तथा केस की जानकारी और अपील संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दतिया जिले से अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग जाति के 532 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि 91,59,000 रुपये का भुगतान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला दतिया के द्वारा जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित दिव्यांगजनों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आगामी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से तैयार किए जाएं। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े द्वारा जनगणना के तहत चल रहे मकान सूचीकरण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सुपरवाइजरों को प्रशस्ति पत्र देकर बीते दिनों सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सटीक मकान सूचीकरण न केवल जनगणना के लिए बल्कि भविष्य में विकास योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सभी सुपरवाइजरों और फील्ड कर्मचारियों से अनुरोध किया कि जनगणना का कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भरोसेमंद रिकॉर्ड बने। जिला स्तरीय परियोजनाओं, न्यायालयीन मामलों में समन्वय और विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रधान न्यायाधीश विजय चंद्र की अध्यक्षता में जिला मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्रा ने मॉनिटरिंग सेल की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन व्यवस्थाओं और जिला स्तर पर चल रहे विकास कार्यों के बीच समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि जनहित से जुड़े कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूर्ण हो। श्री चंद्रा ने बताया कि 21 अगस्त से 23 अगस्त तक 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पक्षकारों की सहमति से बैंकिंग, सिविल, मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता विवाद, रेरा, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया नियंत्रण आदि जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। दतिया जिले में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया कि संपर्क अभियान में बिलों का सुधार किया जा रहा है। दतिया जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एमएच हॉटलाइन का। लीजिए, लेते हैं पहला फोन कॉल। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन में।
1: मैं राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ, राजाराम नगर देवास
0: से। जी राजेश अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: धन्यवाद दीदी, आज जैसे कि बहुत बड़ा दिन है, 24 मई का, जैसे मजरू
0: जी जी जी हाँ
1: और इसी दिन राजेश रोशन साहब का जन्मदिन है, जो के महान संगीतकार है।
0: जी हाँ, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। जी हाँ, बताए। जी हाँ राजू जी, बताएं गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप मजरू जी की?
1: खुद्दार का गीत सुनवा दीजिए, इनकी जोड़ी का बनाया हुआ गीत है।
0: खुद्दार फिल्म का?
1: हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू।
0: जी जी
1: गीत है, लता जी शोरबा की आवाज में।
0: जी बिल्कुल, हम आपको
1: सुनते हैं और इनको बधाई देते हैं हम राजेश रोशन साहब।
0: जी चलिए, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत खुद्दार फिल्म से। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं
1: सूरज की किरणें आपकी शान बने,
0: जी?
1: फूलों की कलियां आपकी मुस्कान बने,
0: जी
1: गमों से न हो कोई भी रिश्ता, सिर्फ खुशियां ही आपकी पहचान बने।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत सी कविता के लिए। बताएं कौन बोल रहे हैं?
1: मैं पालदा नाका इंदौर से।

0: मंसूरी बोल रहा हूँ।
1: जी मंसूरी जी, हम समझ ही गए थे कि इस तरह से हमारी शायरियों के द्वारा स्वागत आप ही करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: ये किशन कन्हैया फिल्म का गाना है।
1: अच्छा,
0: हो गया। हाँ हो गया।
1: अच्छा, आशा भोसले की आवाज़ और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में।
0: हाँ हाँ हाँ
1: जी, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। फ़ोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो,
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: फिल्म
0: बताएं।
1: है निकाह,
0: निकाह, कौन बोल रहे हैं आप?
1: अनोखे सिंह।
0: अनोखी सिंह जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम
1: आपका
0: में
1: भी धन्यवाद।
0: जी। कौन सा गीत सुनेंगे? निकाह फिल्म के तो बहुत खूबसूरत गीत हैं सभी।
1: दिल के अरमां आंसुओं में बह गए,
0: सलमा आगा की आवाज़ जी।
1: और खंडवा सनावत श्रोताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए जिन्होंने उत्सव मनाया
0: जी जी बिल्कुल
1: आकाशवाणी से,
0: जी,
1: और
0: ये
1: जय
0: शुभकामनाएं सभी
1: आकाशवाणी
0: के
1: से
0: लिए
1: बोल
0: पूरे,
1: रहा।
0: जी हाँ, ये शुभकामनाएं पूरे देशवासियों के लिए है जो रेडियो से जुड़े हैं और जिन्होंने इतने उत्साह के साथ हमारे साथ शामिल होकर इस उत्सव को मनाया।
1: हाँ, बाकी उन लोगों ने विशेष मनाया।
0: जी जी बिल्कुल। तो
1: हाँ,
0: चलिए
1: उसमें बनता लीजिए वगैरह सभी हमने सुना, पढ़ा भी पेपर में।
0: जी हाँ जी हाँ, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अनोखी लाल जी, सुनवाते हैं आपको आपके
1: और
0: पसंद का ये
1: उनको
0: गीत
1: सर जी नर्मदे हर का जवाब नहीं मिलता,
0: जी।
1: उनको सनावत बड़वा वाले श्रोताओं को नर्मदे हर का जवाब नहीं मिलता।
0: जी, चलिए नर्मदे हर हम कहते हैं,
1: नर्मदे
0: सबको
1: हर,
0: जवाब देते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, सुनिएगा।
1: धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं इंदौर कोहिनूर कॉलोनी से जीनत परवीन बोल रही हूँ।
0: सीनत जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: बॉर्डर पिक्चर का सुनना है, ये
0: बॉर्डर फिल्म का।
1: जाते हुए लम्हो, जरा ठहरो वो बोला।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। सुनिए। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: शुक्रिया मैम।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो जी, नमस्ते. कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार मैडम। लाजवाब से अनिल बामनिया बोल रहा हूँ मैडम।
0: अच्छा, अनिल बामनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में. बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म है, मूवीज का नाम है आज इतिहास, और उसके
0: इतिहास,
1: बोल, हाँ उसके बोल है दिल की कलम से।
0: दिल की कलम से. जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे आपके पसंद का गीत. तो लीजिए, सुनिए
1: हाँ
0: आपके
1: जी,
0: पसंद का गीत.
1: ओके ठीक है मैडम,
0: फोन करने के लिए धन्यवाद.
1: ठीक।

0: हेलो
1: अभिलाषा जी नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव
0: महू से। जी जी, मैं एकदम अच्छी हूँ विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: मुझे आप फरमा दें, लता जी का गाया हुआ है, फिल्म का नाम है गबन।
0: गबन का? अच्छा, मैंने देखा, मैंने देखा
1: जी,
0: बड़ा खूबसूरत गीत
1: है। दिल की बात मुझसे बोलने से महबूब की बात
0: जी हाँ, वो गीत ही बहुत खूबसूरत है। और गबन, जैसे ही फिल्म का नाम आता है तो हमें भी सबसे पहले यही गीत याद आता है।
1: ऐसे गाने क्या है आजकल सुनने नहीं मिलते, और मेरा आपसे अनुरोध ये था कि ऐसे गीत आप फिल्म संगीत में जरूर बजाएं।
0: जी जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं। देखिए, तरह तरह की सभी की फरमाइशें होती है, और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हर तरह की फरमाइश या पसंद हम सुनवा सके। फिल्म संगीत पे भी हम ऐसे ही गीत लेते हैं, सदाबहार गीत जो सभी को पसंद आए।
1: श्रोताओं से भी मेरा यही निवेदन था कि सभी को प्लीज मौका दें।
0: जी जी बिल्कुल,
1: आपसे बात करने का।
0: जी बिल्कुल, चलिए विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। सुनिए आपके पसंद का ये गीत।
1: गर्मी में आप अपना ध्यान रखें।
0: जी बिल्कुल, आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ख्याल करने के लिए। जी सुनिए अपने पसंद का गीत। जी

0: हेलो हेलो।
1: हाँ नमस्कार,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: भूपेंद्र कुमार राजस्थान।
0: भूपेंद्र जी, आपने शायद रेडियो चला रखा है, प्लीज उसे बंद कर दें या दूर कर दें,
1: बंद
0: क्योंकि
1: भी है लेकिन
0: उसकी वजह
1: बंद
0: से
1: क्या।
0: आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही क्लियर। जी बताएं, कौन सा
1: कोटा
0: गीत, कहाँ से बोल रहे हैं आप, पहले ये बताएं।
1: राजस्थान से।
0: राजस्थान से बोल रहे हैं, अरे वाह, बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: गर्ल्स हॉस्टल का
0: गर्ल्स हॉस्टल
1: ये
0: का
1: हसीन रात ये बहार ये सब।
0: ये हसीन रात जी, आशा
1: हेमामती राशा बोलती थी।
0: आशा जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। जी
1: हाँ
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे। तो राजस्थान का इस समय मौसम कैसा है, क्योंकि
1: बहुत बहुत गर्मी है
0: जी
1: थोड़ा।
0: जी राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी याद आती है, और अभी तो आपने गर्मी के सीज़न में ही फ़ोन किया है तो
1: बहुत गर्मी हो रही है,
0: जी जी
1: 44 टेम्परेचर चल रहा है।
0: हाँ, अभी सभी जगह ये हाल है, सभी जगह
1: हाँ
0: गर्मी अपने कहर बरसा रही है। तो चलिए
1: क्या करें,
0: जी बिल्कुल
1: सब खुद का आनंद लेना चाहिए सभी मौसम का।
0: जी बिल्कुल, ये तो है, मौसम का आनंद लेना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए रखिएगा गर्मियों में अपना ख्याल। इसी के
1: चलिए
0: साथ
1: रखें अपना ख्याल तो
0: जी
1: परिवार
0: आपको
1: तो मेरे से।
0: हाँ, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। फोन करने
1: भूपेंद्र
0: के लिए
1: का नाम
0: धन्यवाद
1: तो
0: जी।
1: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राजूलाल मेहर।

0: हूँ, भीलवाड़ा जिला झालावाड़ राजस्थान से बोल रहा हूँ।
1: राजू जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? आपसे पहले भी अभी एक राजस्थान से ही फोन कॉल लिया था हमने। जी हाँ, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
0: अर्पण का सुना देना मैडम, लिखने वाले ने लिख डाले।
1: जी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ और साथियों की आवाज़ में ये गीत है। चलिए तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का।
0: साथियों को घर के नाम ले दूं थोड़ा?
1: जी हाँ, चार बोलिए।
0: गोपाल सिंह जाला है
1: जी,
0: विकास मेहर, अनिल मेहर,
1: रक्षिता
0: मेहर और रेणु मेहर।
1: आप सब सुन रहे हैं साथ में रेडियो? आप सभी सुन रहे हैं आपका गीत?
0: हाँ जी जी।
1: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग
1: जी। हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, अभी मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: जी। स्वागत है आपका योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: फिल्म है राजा और रंक, और गीत के बोल हैं ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना।
0: मोहम्मद रफी की आवाज़ है, तो चलिए सुनवाते
1: जी
0: हैं आपको आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बोल रहा हूँ।
0: अच्छा सूर्य प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: अंदाज फिल्म का गाना सुनना है, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज, ये अक्षय कुमार वाली अंदाज? जी
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: जी चलिए तो हम आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि समय कम है और आप हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हैं, तो आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का गीत। फोन करने
1: जी
0: के
1: मैम,
0: लिए
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: अंदाज फिल्म के इसी गीत के साथ आज का एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे लाइव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला प्रसारण मध्य प्रदेश केंद्र से होगा अब से कुछ ही पलों में।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले एक जरूरी बात, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम अब रिकॉर्ड किया जाता है सुबह 10:30 से 11 बजे, और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और STD कोड है 075।
2: हेलो, फोन करेंगे सुने।
1: जी फोन करेंगे सुने, आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कौन बोल रहे हैं आप?
2: हम सागर से बोल रहे हैं, पंडित शिवनारायण तिवारी।
1: क्या करते हैं आप?
2: पंडिताई करते हैं सर।
1: अच्छा, तो बताइए क्या सुनना चाहेंगे आज?
2: आज सुनना चाहेंगे

0: सौतन की बेटी का।
1: सौतन की बेटी का कौन सा गीत के बोल बताएंगे?
0: ये हल्का हल्का सुरूर है।
1: ये जो हल्का हल्का सुरूर है, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
0: गर्मी बहुत पड़ रही है सर।
1: गर्मी बहुत पड़ रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, 44-45
1: 44-45-46 जो कभी हम लोग नहीं देख पाते थे, अब उसका इसमें कहीं ना कहीं गर्मी जो इतनी ज्यादा पड़ रही है, इसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग हैं।
0: हाँ, वही तो, जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है।
1: आप जैसे जागरूक श्रोता अगर ये जानते हैं तो इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या?
0: वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष हरे हरे वृक्ष होने चाहिए, लगाना चाहिए। और
1: जी जी जी,
0: हमारे खेत पले हुए हैं।
1: ठीक है, तो आपका गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन कर इस गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश। हमारी बात किन से हो रही है हम जानना चाहेंगे।
1: जी सर नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह।
0: प्रेम सिंह बोल रहे हैं?
1: जी सर।
0: नागदा उज्जैन से आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर मैं फिल्म का नाम है हमराज और गाने के बोले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
0: नीले गगन के तले, बहुत बढ़िया गीत आपने पसंद किया है। लेकिन अभी तो मौसम है बड़ा गरम गरम सा हो रहा है कुछ?
1: जी बिल्कुल काफी गरम हो रहा है। टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 45 डिग्री के करीबन चल रहा है।
0: जी जी जी,
1: मतलब 20 दिन से ऐसा ही लगभग मौसम हो रहा है और काफी गरम तेज हवाएं भी चल रही है।
0: जी जी, लेकिन हमने इसलिए मौसम की गर्म की बात की क्योंकि ये जो गीत फिल्माया गया है नीले गगन के तले, एक शरद ऋतु में फिल्माया गया है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे कि मेरे घर के पास में 2 बड़े बरगद के पेड़ हैं।
0: जी
1: वहाँ पे मतलब काफी पक्षी आते हैं, शाम के समय आते हैं, सुबह के समय आते हैं। तो उनकी जब चहचहाट होती है ना, तो मतलब उस समय शाम का जब समय होता है ना, तो काफी अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो कुदरत जो हमें देती है, कुदरत की जो ध्वनियाँ होती है, चाहे पंछियों की हो चाहे पेड़ों की सरसराहट की हो, उसका एक अलग ही मजा होता है ना?
1: जी बिल्कुल। तो उन जो पक्षी आते हैं ना, उनके लिए हमने मतलब है ना
0: जी
1: 2-3 टब में पानी भर के रखा हुआ है और ऐसे मतलब
0: बहुत बढ़िया
1: ऊपर के लटका रखे हैं मतलब पेड़ के नीचे, ताकि उनमें बैठे हो और पानी पिए। और मतलब कुछ ऐसे पक्षियों के लिए मतलब दाने भी बिखेर रखे हैं हमने कि वो पानी भी पिए, मतलब वहाँ पे बैठे और वो अपना दाना भी खाए।
0: प्रेम सिंह जी आप तो गांव में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, उसके बावजूद हम क्या करते हैं, छत पर एक सकोरा रखते हैं, एक पीछे गार्डन में रखते हैं और एक आगे रखते हैं, और उसके अलावा चिड़िया गिलहरी और कबूतर पूरे सब आके उसमें बिल्कुल पानी पीना खाना और आवाज देते हैं, आपको बताएं सवेरे सवेरे से हमको।
1: जी बिल्कुल, अगर उसमें पानी खत्म हो जाता है ना सर,
0: तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल बैठ जाते हैं और मतलब ऐसे बोलते हैं कि इसमें पानी खत्म हो गया, उनकी भाषा में बोलते हैं, तो हमें मतलब पता चल जाता है कि इनके बर्तन में पानी खत्म हो गया है,
0: बिल्कुल
1: दाने खत्म हो गए, तो डालना है हमें।
0: तो चलिए बहुत अच्छा लगा, आपका जो गीत है आपकी पसंद का हमराज फिल्म का आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो, आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: पल पल की दोस्ती का वादा है आपसे, अपनापन कुछ ज्यादा है आपसे, मत सोचना कि भूल जाएंगे आपको, जिंदगी भर दोस्ती निभाएंगे, ये वादा है आपसे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारी बात किससे हो रही है?
1: मैं पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ सर।
0: मोहम्मद रफी मंसूरी, बताइए मोहम्मद रफी साहब, आप क्या सुनना चाहेंगे? आप तो खुद गानों के सरताज हैं, नाम आपका मोहम्मद रफी है।
1: जी शुक्रिया। ये फकीरा का सुनवा दीजिएगा सर, हम तो झुककर सलाम करते
0: हैं। हाँ, बहुत बढ़िया गाना है और बहुत दिनों में सुनने में आएगा ये।
1: हाँ हाँ, ये हिडन गाने रहते हैं सर कुछ।
0: बहुत बढ़िया, एक अलग तरह के की पसंद है आपकी। आप कव्वाली बेस्ड गाने आप थोड़े से पसंद करते हैं मुझे सर।
1: हाँ, कव्वाली शरारत और मस्ती भरे जो गाने रहते हो।
0: तो ये खूबसूरत सा गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, गीत का आनंद लीजिए।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: नमस्कार।
2: नमस्ते सर।
1: फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
2: नमस्ते, गंगा मेरा बात करी नीमच से।
1: कैसी हैं गंगा जी आप?
2: अच्छे हूँ मैं सर, आप कैसे हो?
1: हाँ मैं भी बढ़िया हूँ। आज क्या सुनना चाहेंगी?
2: सर मूवी का नाम है हम किसी से कम नहीं और गाने का बोल है चांद मेरा दिल।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गीत पसंद किया है आपने। इसी गीत को पसंद करने की कोई खास वजह?
2: जी सर, हमारी सिस्टर को बहुत पसंद है ये सॉन्ग।
1: अच्छा।
2: हम उसके लिए सुन रहे हैं।
1: गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, आपकी सिस्टर और आप दोनों गीत का आनंद ली। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करेगी सुनी।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते,
1: महेंद्र वर्मा बात कर रहा हूँ, मंदसौर।
0: महेंद्र वर्मा, स्वागत है महेंद्र जी का। क्या करते हैं महेंद्र जी, आप हमारे श्रोता जानना चाहेंगे?
1: सर मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ।
0: क्या क्या बनाते हैं आप, वेल्डिंग करके या केवल?
1: सर वो गेट की फ्रेम आती है और वो सब आता है ना, वो सब बनाते हैं।
0: अच्छा, तो ये आपकी खुद की शॉप है या फिर आप कहीं किसी के पास काम करते
1: हैं? काम करते
0: हैं। शौक क्या क्या है आपके और?
1: सर हमारा शौक स्विमिंग करना है।
0: स्विमिंग, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो वहाँ तो कुछ आसपास नदी या कुछ इस तरह के का है, तालाब वगैरह क्या है आपके?
1: सर मंदसौर में।
0: मंदसौर में
1: वाटर पार्क है ना, मंदसौर में
0: वाटर पार्क में।
1: ओके। और शिवना नदी भी है, वो पशुपतिनाथ मंदिर है ना वहाँ पे।
0: मतलब नेचुरल स्विमिंग का आनंद लेते हैं आप। तो आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: सर मूवी का नाम है टेबल नंबर 21 और गाने के बोल है मन मेरा।
0: तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: कालीचरण यादव बोला सर, संदलपुर आत्री से।
0: कालीचरण यादव जी आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं ग्वालियर के पास गाँव मेरा आत्री संदलपुर।
0: संदलपुर क्या करते हैं कालीचरण जी आप?
1: मैं पान की खेत में काम करता हूँ। पान की पान होता है हमारे गांव में, देसी पान होता है गांव में संदलपुर में।
0: जी जी जी, तो ये पान की खेती में काम करते हैं या खेती आपकी खुद की है?
1: खुद की खेती करते हैं ना जी, होता
0: है
1: पान होते हैं हमारे।
0: क्या होते हैं फिर से बताइए थोड़ा सा।
1: देसी पान होता है हमारे गांव में, गांव रात्रि संदलपुर में।
0: हाँ हाँ हाँ, तो इसकी तो आपने पूरा पॉली हाउस के अंदर करते हैं या ओपन में करते हैं इसको?
1: उसमें पत्थर की दीवार होती है, उसमें ऊंचाई में उसमें तैयार करके घास में करना पड़ती है, बांस लगाना पड़ती है, बहुत मेहनत का काम।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बांस लगाना पड़ती है, मंडप बनाना पड़ते हैं, है ना। हाँ हाँ, नहीं पॉली हाउस के अंदर हमने इसकी खेती देखी है।
1: आपने कहाँ देखी थी सर?
0: ये हरदा में।
1: हरदा में होती पानी खेती होती है, हरदा में भी होती है पानी खेती वहाँ की
0: जी। तो आज क्या सुनना चाहेंगे कालीचरण जी?
1: मेरे को गाना सुनना है, पता सुनवा दो आप। जब प्यार किसी से होता है, 100 साल पहले मुझसे प्यार था, लता रवि के बारे में गाना है, पुरानी पिक्चर है।
0: हाँ ये देवानंद और आशा पारिक की फिल्म है। तो चलिए आपका गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: नमस्कार, फोन करेगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: मैं ग्राम परसेंटा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यमुना बेल्ट के किनारे से मैं आपका दोस्त बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। सर
0: क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: तो सर दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, ये है ना, ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया था, अभी तो यही था अभी खो गया।
0: गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हेलो राधे सर।
0: जी नमस्ते।
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं, किससे बात हो रही है हमारी?
1: राधे बात कर रही हूँ।
0: राजनंदिनी, तो क्या सुनना चाहेंगी राजनंदिनी जी आप?
1: संघर्ष गाने के बोले, पहली बार बलिए दिल का हार।
0: और कुछ कहना चाहेंगी राजनंदिनी जी?
1: जी सर, कहना चाहेंगे अभी घर में बहुत पड़ रही है तो कृपया घर में आए।
0: जी, गर्मी बहुत पड़ रही है लेकिन जो काम है हम लोगों को वो तो करना ही होते हैं। बिल्कुल, लेकिन लेकिन गर्मी के लिए, इसे बचने के लिए जो एहतियात है वो बरत सकते हैं हम लोग, है ना? अगर पैदल जा रहे हैं तो छाता लेकर जा सकते हैं, गाड़ी पर है तो टोपी लगा सकते हैं, है ना? और उसके
1: चीजों का सेवन करें, छाछ पिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल, मठा पिए, नारियल पानी पिए, इस तरह
1: पानी पिए, इलेक्ट्रॉन अपने साथ में हमेशा रखें,
0: इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज हमेशा अपने साथ रहे तो बहुत ही अच्छी बात है,
1: बहुत अच्छी बात है।
0: जी, तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजनंदिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडी सेट पर।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: श्रीताप जाखड़े बोल रहे हैं, जिले महाराष्ट्र से।
0: श्रीताप जाखड़े, जाखड़े साहब आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: ये धूमभद्र सिंह का गाया हुआ गाना सुनना है, मधुमती का।
0: मधुमती फिल्म का कौन सा गीत?
1: मधुमती का है, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है दिल ने।
0: टूटे हुए ख्वाबों ने, ये सैड सॉन्ग सुनने का क्या कारण है? आपकी कोई वजह है इसकी कुछ?
1: हाँ, हमको तो मतलब ये पुराने गाने बहुत पसंद है ना।
0: पुराने गाने आपको पसंद है इसलिए सुनना चाहते हैं। गीत बहुत अच्छा है,
1: सलीम चौधरी साहब का संगीत है।
0: तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: अभी आपने सुना मधुमती फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। पसंद करने वाले श्रोता थे महाराष्ट्र से श्रीताप जाखड़े। मधुमती फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब अपने रेडियो मित्र दिनेश कुमार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करिए गीत सुने। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता अभिव्यक्त होती है। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू आज जबलपुर के एक दिवसीय प्रवास पर हैं। वे यहां सामाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ कल भोपाल के तुषार शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति के मौत के मामले की सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर आज निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जनगणना के प्रथम चरण में भोपाल नगर निगम सीमा में 7 लाख से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है। इसके साथ ही 3,285 जनगणना ब्लॉकों में से 2,800 मकानों का सूचीकरण कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट बना रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर 3:30 बजे से होगा, वहीं दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले जिस गीत को हमने लिया है उसके सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। अमित खातकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवलेखा, पारसमणी और संदीप पाटिल। इसी गीत को सुनना चाहा है वसंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। इन्होंने ये हमें खत लिखा प्रेमिलागंज आटोल जिला रतलाम से। और आप सभी ने सुनना चाहा है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में दिल है तुम्हारा फिल्म का नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि। आप सभी ने सुनना चाहा है उदित नारायण और अलका याग्निक, लता मंगेशकर की आवाज़ों में दिल तो पागल है सुनगा नगमा। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर के युगल सुरों में दिल तो पागल है फिल्म का ये नगमा।

अय्यूब आपको सुनाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, आसमा, सालिया, शुएब खान, मुस्तबा, रऊफ और शरीद, गांधी बाग अकोला से रमेश और वैशाली। आप सभी ने सुनना चाहा है सोनू निगम की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम दिल तो बच्चा है जी।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र का 11वां भाग।

0: प्रणाम श्रोतागण, आप सबके साथ मैं भी प्रस्तुत हूँ पंचतंत्र की कथाओं का रसास्वादन करने के लिए। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पंचतंत्र का चौथा प्रकरण लब्ध प्रणाशम, जिसे पंडित विष्णु शर्मा ने इस प्रकार प्रारंभ किया। समुत्पन्नेषु कार्येषु
1: समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते स एव दुर्गतरति जलस्थो वानरो यथा। अर्थात कार्य में विपत्ति के आ जाने पर जिस व्यक्ति की बुद्धि क्षीण नहीं होती है वह दुर्गम मार्गों को भी पार कर सकता है। जैसे जल में निवास करने वाले रक्तमुख नाम के वानर ने अपनी बुद्धि के द्वारा एक बहुत बड़ी विपत्ति को पार कर लिया। वत्सगण सुनो, समुद्र के किनारे सभी ऋतुओं में फलने वाला एक विशाल जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष पर रक्तमुख नाम का एक वानर निवास करता था। किसी दिन संयोग से कराल मुख नाम का एक मगर समुद्र से निकलकर उस वृक्ष के नीचे कोमल बालुका भूमि पर बैठ गया। उसे देखकर रक्तमुख ने कहा,

0: महाशय, आप मेरे घर आए हुए अतिथि हैं। आइए, इस अमृत के समान मधुर जामुन का आनंद लीजिए। अतिथि तो नारायण का रूप होते हैं।
1: अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है मित्र, मैं अवश्य मीठे जामुन खाऊंगा। आज से हम मित्र हैं, मैं तुम्हें शास्त्र पाठ सुनाया करूंगा। वाह, अरे वाह मित्र वाह, ये तो सचमुच बड़े स्वादिष्ट है। मैं कुछ फल अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। हाँ, अरे वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी, वो बेचारी अकेली घर में रहती है, ऐसे फल उसे कहाँ मिलते हैं।
0: अवश्य मित्र, परंतु तुम्हारे भाग का तुम खा लो, मैं भाभी के लिए और मीठे जामुन तोड़ कर ला देता हूँ, और भाभी को देवर की ओर से प्रणाम देना मित्र।
1: अवश्य दूंगा मित्र, अवश्य दूंगा, आज मैं चलता हूँ भाई। प्रिये प्रिये, अरे कहाँ हो तुम? अरे शीघ्र आओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ।
2: नाथ,
1: देखो देखो,
2: वाह क्या स्वाद है, तुम इन अमृत तुल्य फलों को कहाँ से लाए हो?
1: भद्रे, रक्तमुख नाम का वानर मेरा अत्यंत घनिष्ठ मित्र हो गया, वही प्रेम पूर्वक प्रतिदिन इन फल को देगा, वो इसी फल वृक्ष में रहता भी है।
2: अच्छा। जो सदा इन अमृत तुल्य फलों को खाता है उसका हृदय भी अमृत के समान होगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उसका हृदय ला कर दो, ताकि उसे खाकर मैं अमर हो जाऊं और तुम्हारे साथ आनंद भोगती रहूं।
1: प्रिय, ऐसी बात न कहो, वो मेरा भाई है, इस बात को मैं स्वीकार कर चुका हूँ, वो रोज फल देता है, मैं उसे मार नहीं सकता, इस निरर्थक आग्रह को तुम छोड़ दो।
2: इससे पूर्व कभी तुमने मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं किया, जान पड़ता है वो कोई वानरी है, तुम्हें उससे अनुराग हो गया है, इसी कारण तुम दिन भर वहीं रहते हो।
1: ये तुम क्या कह रही हो, तुम व्यर्थ ही संदेह कर रही हो।
2: आज मैं तुम्हें भली भांति समझ गई हूँ, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रसन्न मन से नहीं दे रहे हो और मेरे मन की कोई इच्छा भी पूरी नहीं करते हो। धूर्त,

0: तुम्हारे हृदय में मेरी ही तरह कोई दूसरी प्रियतमा है।
1: नहीं नहीं प्राण प्रिय, अब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर चुका हूँ और दासता के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझ पर इतना प्रसन्न क्यों हो रही हो?
0: देखो इस प्रकार मेरे चरणों में बैठकर झूठे प्रेम का ढोंग करना व्यर्थ है। यदि वो सचमुच वानर है तो उसके प्रति तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह क्यों? यदि तुमने मुझे उसका हृदय लाकर नहीं दिया तो आज से मेरा अनशन है।
1: क्या करूं? अरे अरे मैं उसे कैसे मार सकता हूं?
2: आओ आओ मित्र, आज इतने दिनों बाद क्यों आए? क्या बात है, सदा की भांति प्रसन्न नहीं हो, इस उदासी का क्या कारण है?
3: मित्र, तुम्हारी भाभी ने मुझे बहुत डांटा फटकारा।
2: हाँ?
3: उसने मुझसे कहा है कि मैं कृतघ्न हूं।
2: क्यों बोला?
3: और मैं उसे अपना मुंह न दिखाऊं।
2: अरे रे रे, ऐसी क्या बात हो गई?
3: क्योंकि भैया मैं रोज तुम्हारे घर आकर चावन खाता हूँ और तुम्हारा कोई भी उपकार नहीं करता, कभी तुम्हें घर भी नहीं ले जाता, इसलिए आज मैं तुम्हें घर लेकर ही चलूंगा, अन्यथा वो मुझसे परलोक में ही मिलेगी।
2: ओह ये बात है। अरे मित्र इसमें कौन सी आपत्ति है, चलेंगे कभी? चलेंगे, जरूर चलेंगे।
3: नहीं नहीं मित्र, आज ही चलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तुम्हारी भाभी तुम्हारी प्रतीक्षा में चौका सजाकर सुंदर गहनों और वस्तुओं से श्रृंगार करके द्वार पर वंदरवार सजाकर उत्कंठा पूर्वक बैठी है।
2: मित्र मैं तुम्हारा प्रेम समझता हूँ, परंतु हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, जल के भीतर कैसे जा सकते हैं? आप भाभी को यहाँ ले आए जिससे मैं प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद ले सकूं।
3: रक्तमुख भाई,
2: हाँ?
3: समुद्र के भीतर एक अत्यंत रमणीय टापू पर मेरा घर है।
2: अच्छा,
3: तुम मेरी पीठ पर बैठकर अत्यंत सुख से निर्भय होकर वहां पहुंच सकते हो।
2: यदि ऐसी बात है तो विलंब क्यों, शीघ्र चलें। लीजिए मैं आपकी पीठ पर चढ़ जाता हूँ।

0: भाई तनिक धीरे धीरे चलिए, जल की इन लहरों से मेरा शरीर भीगता जा रहा है, ऐसा लगता है मैं अभी डूब जाऊंगा।
1: अब तुम्हें ऐसे बीच सागर में ले आया हूं, ये अब मेरे वश में है, कहीं इधर उधर भाग नहीं सकता।
0: संभाल के थोड़ा।
1: अब मुझे असली अभिप्राय कह ही देना चाहिए ताकि ये अपने इष्ट देव को स्मरण कर ले।
2: रक्तमुख, स्त्री की बातों का विश्वास दिलाकर मैं तुम्हें यहां मारने के लिए लाया हूं। तुम अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो।
0: भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिससे आपने मेरे वध का निश्चय किया?
2: मेरी स्त्री ने कहा है कि नित्य मधुर जामुन को खा खा कर तुम्हारा हृदय स्वादिष्ट हो गया है, इसीलिए वो तुम्हारे हृदय मांस को खाना चाहती है।
0: दुष्ट, अभी बताता हूं। भद्र, यदि ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना हृदय जामुन वृक्ष की कोटर में सुरक्षित रखा है, मैं उसे लाकर भावी को समर्पित कर देता। आप मुझे हृदयहीन बनाकर यहाँ क्यों लाए? हम वानर हृदय को सुरक्षित रखने के लिए अपने शरीर से अलग ही रखते हैं।
2: अरे मित्र, यदि ऐसी बात है तो फिर मैं पुनः तुम्हें उसी जामन वृक्ष पर पहुंचा देता हूं। हाँ, हाँ, तुम मुझे अपना हृदय दे देना ताकि मैं अपनी दुष्ट पत्नी के अनशन को तोड़ सकूं।
0: हे प्रभु, शीघ्र ही किनारे पहुंचा दो।
2: लो मित्र, तट आ गया। अरे तुम तो पहले ही कूद गए हैं। अरे वृक्ष पर भी पहुंच गए।
0: आज बड़े भाग्य से मेरे प्राण बच गए और मैं सकुशल लौट आया।
2: अरे मित्र, ए मित्र।
0: हाँ?
2: अरे अपना वो हृदय तो मुझे दे दो जिसे खाकर तुम्हारी भाभी अपना अनशन व्रत तोड़ दे।
0: मूर्ख, विश्वासघाती, क्या किसी के दो हृदय होते हैं? तुम इस जामुन के पेड़ के नीचे से शीघ्र ही चले जाओ और फिर कभी इधर ना आना।
2: अरे अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। चलो पुनः प्रयत्न करता हूं, संभव है मेरे कहने में आकर वो पुनः मेरा विश्वास कर ले। अरे मित्र, अरे मैंने तो तुम्हारी मित्रता की परीक्षा ली थी। तुम्हारी भाभी को हृदय की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
0: दुष्ट, यहां से तत्काल चले जाओ। अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। प्रियदर्शन सर्प से कह दो कि अब गंगदत्त पुनः कुएं में जाने वाला नहीं है।
2: क्या मतलब? अरे जरा साफ साफ समझाओ।
0: किसी नगर में गंगदत्त नाम का एक मेंढक रहता था। उसने अपने कुटुंबजनों से अपमानित होकर प्रियदर्शन नाम के एक सर्प को उन सभी कुटुंबजनों को मारने के लिए नियुक्त किया।
2: अच्छा, अच्छा।
0: उस सर्प को उसी कुएं में रहने का प्रबंध भी कर दिया। जब उस प्रियदर्शन सर्प ने उसके सारे कुटुंबजनों को खा लिया, तब गंगदत्त के परिवारजनों को खाना प्रारंभ कर दिया। गंगदत्त अपने किए पर पश्चाताप करने लगा, किसी तरह कुएं से निकलकर भागा। प्रियदर्शन के लाख समझाने और मित्रता की दुहाई देने पर भी वो कुएं में नहीं लौटा। इस कारण मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊंगा कराल मुख।
2: मैं जानता हूं मित्र, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, परंतु यदि तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं अनशन करके यहीं पर प्राण त्याग दूंगा।
0: तुम्हारे जो मन में आए करो, परंतु तुमने जो कपट किया है वो अक्षम्य है। तुम स्त्रैण हो, पत्नी की बातों में आकर तुमने अपने मित्र के प्राणों को लेने की सोची। सच है, स्त्री की बातों में आकर पुरुष उन्हें क्या क्या नहीं दे डालता। क्या क्या नहीं करता। तुमने नंदवर रुचि की कथा सुनी है?
2: नहीं तो।
0: तो सुनो, किसी राज्य में नंद नाम का अत्यंत प्रसिद्ध बलवान और पराक्रमी राजा राज्य करता था।
2: अच्छा।
0: अनेक राजाओं की मुकुटमणियों की ज्योति से उसका पाद पीठ जगमगाया करता था। उसका यश संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था। उसका वररुचि नाम का एक मंत्री था।
2: अच्छा।
0: वो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। एक बार उसकी स्त्री के साथ उसका कलह हो गया।
2: अच्छा।
3: पिए, ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे रुष्ट हो गई? कल से तुम्हारे स्वभाव में ये परिवर्तन देख रहा हूँ।
4: आप मुझसे न ही पूछे तो उचित होगा। इस समय मैं अपने आपे में नहीं हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दें।
3: पिए, तुम जैसे भी प्रसन्न हो सकती हो कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करूँगा।
4: यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुने। अगर आप अपना सिर मुड़ाकर मेरे पैरों पर गिर जाएं, तो मैं प्रसन्न हो सकती हूँ।
5: वर रुचि ने वही किया। फिर उसकी स्त्री मंदारी प्रसन्न हुई। इधर संयोग वश महाराज नंद से उनकी महारानी कुपित हो गई थी। किसी भी प्रकार महाराज उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे।
6: महारानी, आप क्यों क्रोधित हो रही हैं? आपको यह करना क्या शोभा देता है?
7: महाराज, मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये आप मुझे ना समझाएं। मैं भी महाराज अधिराज अमर शक्ति की एकमात्र पुत्री।

0: हूँ। महारानी की क्या मर्यादा है ये मैं आपसे नहीं सीखूंगी।
1: प्रिय, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुम्हें मनाऊं।
0: आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपके मुख पर लगाम लगाकर दौड़ाती हूँ। मेरे दौड़ाते समय यदि आप घोड़े की तरह हिन हिन आएंगे तो मैं आप पर प्रसन्न हो जाऊंगी।
1: अरे आप क्या कह रही हैं?
2: विवश होकर राजा ने वही किया जो महारानी ने कहा, तदंतर वो भी प्रसन्न हो गईं।

दूसरे दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज नंद के समक्ष जब वररुचि आए तो उनको मुंडित देखकर राजा ने पूछा,

0: वरुचि, किस उपरो पर तुमने ये मुंडन कराया है?
1: महाराज, स्त्रियों के आग्रह से मनुष्य क्या नहीं करता। जिस पर्व में वो घोड़ी की तरह हिनहिनाता है, मैंने उसी पर्व में मुंडन करवाया है।
0: अच्छा।

0: दुष्ट मकर, तुम भी नंद और वर रुचि की तरह स्त्रैण हो, इसलिए उनके कहने से तुमने मुझे मारने का प्रयास किया।
1: मगरमच्छ अभी वार्तालाप कर ही रहा था कि किसी जलचर ने आकर कहा कि उसकी स्त्री जो अनशन पर बैठी थी वो उसे देर होती देख और स्वयं को तिरस्कृत समझकर मर गई। कराल मुख वज्रपात के समान शब्दों को सुनकर शोक से व्याकुल हो उठा।
2: ओह, मुझे अभागे पर ये क्या विपत्ति आ गई। मित्र, मैंने जो तुम्हारा अपराध किया है इसके लिए क्षमा कर दो। अब मैं स्त्री के वियोग में अग्नि में प्रवेश करके प्राण दे दूंगा।
0: अरे भाई, ये तो मैं पहले ही जान गया था कि तुम स्त्री से वशीभूत हो। अब तो पूर्ण विश्वास भी हो गया। मूर्ख, ये तो आनंद का अवसर है। ऐसी स्त्री के मर जाने पर तो उत्सव मनाना चाहिए।
2: हे वानर, तुम्हारा कथन यथार्थ है, किंतु मैं क्या करूं? मुझ पर तो एक साथ दो विपदाएं आ पड़ी हैं। एक तो स्त्री के मर जाने से मेरा घर भी नष्ट हो गया है, दूसरा मेरे मित्र से मनोमालिन्य हो गया है।
1: इसी वार्तालाप के बीच एक अन्य जलचर ने आकर मगरमच्छ से कहा कि तुम्हारे घर में किसी दूसरे मगरमच्छ ने आधिपत्य कर लिया है।
2: हाय हाय, अरे मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा मित्र भी शत्रु बन गया है, उधर मेरी स्त्री भी मर गई, साथ ही मेरे घर में भी किसी ने आधिपत्य कर लिया। पता नहीं अभी और क्या क्या होने वाला है। अब तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करूं? साम दाम दंड भेद किसका प्रयोग करूं?
0: अरे कृतघ्न पापी, मेरे मना करने पर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुम्हारे जैसे मूर्ख को मैं कोई उपदेश भी नहीं देना चाहता। यद्यपि स्त्री संसार में सबसे प्रिय होती है, तथापि उसके कहने से मित्रों और भाइयों को समुद्र में नहीं डुबोया जाता।

0: भद्र, विद्वानों का कथन है एक साथ सात पग चलने से ही सज्जन दूसरों को अपना मित्र मान लिया करते हैं। अरे मैं तो तुम्हारे साथ बहुत दिनों तक बैठा हूं। अतः पुरानी मित्रता को सामने रखकर इस विश्वासघाती मित्र को उचित परामर्श देने की कृपा करो।
1: भद्र, यदि ऐसी बात है तो वहां जाकर उस मगर के साथ युद्ध करो। युद्ध में अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि भाग्य से जीवित बच गए तो घर के साथ साथ यश भी मिलेगा।
0: अच्छा।
1: नीति शास्त्र में कहा गया है कि समान शक्ति संपन्न शत्रु के साथ युद्ध करके उसे शांत करना चाहिए।
2: कराल मुख ने वानर के विचार को सुनकर युद्ध करने का निश्चय करके घर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वो अपने घर में घुसे आतताई के साथ युद्ध करने को प्रवृत्त हो गया, और अपनी दृढ़ता और साहस से उसने पुनः अपना घर प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगा।

सच ही कहा गया है, बिना पुरुषार्थ के अनायास ही प्राप्त होने वाली लक्ष्मी से यदि सुख मिल भी जाता है तो उससे उतनी प्रसन्नता एवं तुष्टि नहीं हो पाती जितनी की पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त की हुई लक्ष्मी से होती है। रसिक जन, कैसी लगी ये कहानी हमें अवश्य बताएं। लब्ध प्रणाशम नामक ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। अगला प्रकरण अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय सुनना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र की 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता अभिव्यक्त होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत उमरिया जिले के ग्राम खेरवा टोला में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु हो गई और कुछ नागरिक घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतक के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा घायलों के निःशुल्क उपचार एवं आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जनगणना के प्रथम चरण में भोपाल नगर निगम सीमा में 7 लाख से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है। साथ ही 3,285 जनगणना ब्लॉकों में से 2,800 मकानों का सूचीकरण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर भोपाल के रविंद्र भवन में कल सुरों की लोक सूफी शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पलता शर्मा ने बुंदेली विवाह गीत से की, उसके बाद मशहूर सूफी गायक उस्ताद मुनव्वर मासूम ने कव्वाली पेश की। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोलवाल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, अपनी चर्चा में हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं दुनिया में शांति, सद्भाव और एकता का प्रतीक राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे के विषय में, जिसे हम प्रतिवर्ष 24 मई को मनाते हैं। बहनों, ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आज़ाद

वे दुनिया के सभी देशों को एक साथ एक सूत्र में बांधे रखने का काम करता है राष्ट्रमंडल संगठन। बहनों, राष्ट्रमंडल संगठन का विचार सबसे पहले 1901 में महारानी विक्टोरिया ने अपने जन्मदिन के मौके पर रखा। उनकी मृत्यु इसी वर्ष हो गई। सन 1902 में सर्वप्रथम एम्पायर डे यानी साम्राज्य दिवस मनाया गया, लेकिन सन 1958 में हैरोल्ड मैकमिलन ने एम्पायर डे का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे कर दिया। तब से इसे कॉमनवेल्थ डे के नाम से ही जाना जाता है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। बहनों, यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि विश्व के सभी देशों को आपसी सहयोग, भाईचारे और समानता की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज पूरी दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं आतंकवाद फैल रहा है, तो कहीं जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में शांति और एकता का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि विश्व में शांति होगी तभी विकास संभव होगा। यदि देशों के बीच प्रेम और सहयोग रहेगा तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। राष्ट्रमंडल केवल देशों का समूह नहीं है, बल्कि यह आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी भाषाएं अलग हो, संस्कृति अलग हो या रहन सहन अलग हो, फिर भी हम सब एक परिवार की तरह रह सकते हैं। भारत जैसे देश ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है का संदेश दिया है। आज युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे समाज में प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनाएं। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने के बजाय हमें मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। बहनों, महात्मा गांधी जी ने कहा था, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम उनके विचारों को अपनाएं तो समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। हमें अपने जीवन में सहनशीलता, दया और सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। बहनों, विश्व शांति केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और सद्भाव की भावना रखे तो दुनिया निश्चित रूप से अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण बन सकती है। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान दें। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हमारे त्यौहार के विषय में। बहनों, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक है। हमारे त्यौहार केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि वे हमारी परंपराओं, आस्था, संस्कारों और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक होते हैं। गंगा दशहरा भी ऐसा ही पावन पर्व है, जो इस वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आई और लोगों के पापों का नाश किया। इसलिए इस दिन गंगा स्नान और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और जीवन का आधार है। गंगा हमारे खेतों को सींचती हैं, लोगों को जल प्रदान करती हैं और भारतीय सभ्यता को जीवित रखती हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में गंगा को माँ कहा गया है। गंगा दशहरा हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी नदियों और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आज नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। यदि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना चाहते हैं तो हमें गंगा सहित सभी नदियों को स्वच्छ रखना होगा। त्यौहार समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं। परिवार और समाज के लोग मिलकर पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और खुशियां बांटते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। आज के आधुनिक युग में कुछ लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। हमें अपने त्योहारों के महत्व को समझना चाहिए और नई पीढ़ी को भी इनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति को बचाना ही अपने देश की पहचान को बचाना है। बहनों, गंगा दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। आइए हम सभी माँ गंगा का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें और अपनी महान संस्कृति को आगे बढ़ाएं।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं अपनी क्षमता खुद पहचाने और इसे कैरियर बनाए के विषय में। बहनों, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेष प्रतिभा अवश्य होती है।

किसी को संगीत पसंद होता है, किसी को खेल, किसी को चित्रकला, तो किसी को विज्ञान और तकनीकी। लेकिन अक्सर लोग अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते और दूसरों की नकल करने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाते। बहनों, सफलता का पहला कदम है स्वयं को पहचानना। जब हम अपनी रुचि को और क्षमता को समझ लेते हैं, तब सही दिशा में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यदि किसी बच्चे की रुचि खेल में है और उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए कहा जाए, तो वह कभी पूरी खुशी और सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज के समय में करियर के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। पहले लोग केवल कुछ सीमित क्षेत्रों को ही अच्छा करियर मानते थे, लेकिन अब संगीत, अभिनय, फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, खेल, लेखन, यूट्यूब, डिजाइनिंग और कई नए क्षेत्रों में भी शानदार अवसर है। बहनों, हमें अपनी कमजोरी से डरने की बजाय अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा को सफलता में बदल सकता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। विद्यार्थी को चाहिए कि वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखे और उसी दिशा में मेहनत करे। माता पिता और शिक्षकों को भी बच्चों की रुचि को समझना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हर व्यक्ति अनोखा है। यदि हम अपनी क्षमता को लें और उसे सही दिशा दें, तो निश्चित रूप से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी अपनी प्रतिभा को पहचानें, उसे निखारें और अपने सपनों को साकार करें। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातों के विषय में। बहनों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर देशवासियों को ऐसे संदेश देते हैं जो केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। वैश्विक तनाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नागरिकों से 7 महत्वपूर्ण अपीलें की हैं। इनका मुख्य उद्देश्य विश्व मुद्रा भंडार की बचत करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये 7 बातें इस प्रकार हैं। पहली, ईंधन की खपत कम करें। पेट्रोल डीजल के उपयोग को सीमित करें। जहां संभव हो वहां मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और कार पुलिंग को अपनाएं। दूसरी, सोने की खरीदारी टालें। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए कम से कम 1 साल तक अनावश्यक सोना न खरीदें। विदेशी यात्राओं में कमी। गैर जरूरी विदेश यात्राओं और विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने से बचें। चौथी, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं। दफ्तरों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि ईंधन और समय की बचत भी हो। उन्होंने यहाँ पर हमें यह भी बताया कि इसका प्रयोग हम लोग कोरोना काल में कर चुके हैं। 5वीं, खाद्य तेल का कम उपयोग करें। सेहत और देश के आयात बिल को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक खाद्य तेल के उपयोग में कमी लाएं। 6वीं, प्राकृतिक खेती को अपनाएं। किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने की अपील की गई है। 7वीं, स्वदेशी अपनाएं। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ब्रांडों के बजाय स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी। बहनों, इसमें उन्होंने लोगों से खाद्य तेल का कम उपयोग करने और सोने की खरीदारी से बचने की अपील की है, जो हम बहनों से सीधा जुड़ा है। बहनों, यदि हम खाद्य तेल की बात करें तो आजकल लोग तला भुना भोजन अधिक खाने लगे हैं। इससे मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कई अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। यदि हम तेल का सीमित उपयोग करें और संतुलित भोजन अपनाएं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। बहनों, प्रधानमंत्री जी का यह संदेश केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि यह देश हित से भी जुड़ा है। भारत को खाद्य तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है।
यदि खाद्य तेल की खपत कम करेंगे तो देश का विदेशी मुद्रा खर्च भी हम कम कर पाएंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना मजबूत होगा। इसी प्रकार सोने की अत्यधिक खरीदारी भी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। भारत में लोग सोने को निवेश और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अत्यधिक सोना खरीदने से देश का पैसा विदेशों में जाता है, क्योंकि लगभग 90% सोना आयात किया जाता है। बहनों, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लोग अपनी बचत को उत्पादक कार्यों में लगाएं, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, स्टार्टअप और देश के विकास से जुड़े क्षेत्रों में निवेश करें। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हमें समझना चाहिए कि छोटी छोटी आदतें भी देश के विकास में बड़ा योगदान दे सकती हैं। यदि हर नागरिक जिम्मेदारी से संसाधनों का उपयोग करे तो भारत तेजी से प्रगति कर सकता है। बहनों, प्रधानमंत्री जी के संदेश केवल सलाह नहीं बल्कि देश के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमें स्वस्थ जीवन अपनाना चाहिए, अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए और देश हित में सर्वोपरि रहना चाहिए। आइए हम सभी एक जागरूक नागरिक बने और देश के विकास में अपना योगदान दें।

बहनों, 25 तारीख को गंगा दशहरा है और इस दिन शिवपुरी अंचल में मंदिरों में भी आम खरबूजा दान करने का चलन बहुतायात में है और इन दिनों बाजार में खरबूजे और आम बहुत ही आ रहे हैं। तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं खरबूजे की कुल्फी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप पका हुआ और बारीक कटा हुआ खरबूजा, आधा लीटर फुल फैट दूध, आधा कप कंडेंस्ड मिल्क, चीनी स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच ली है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं क्योंकि हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी मिला रहे हैं। 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, सजाने के लिए बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, 2 बड़े चम्मच मलाई। अब एक भारी तले के बर्तन में दूध डालकर मध्यम आँच पर 10-12 मिनट तक पकाएं। बीच बीच में चलाते रहें ताकि दूध तले में ना लगे। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क और चीनी डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं। गैस बंद करें और दूध को पूरी तरह ठंडा होने दें। खरबूजे के टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर इसकी स्मूदी बना लें। अब ठंडे दूध में खरबूजे की प्यूरी मिलाएं, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। मिश्रण को कुल्फी मोल्ड या ना हो आपके पास तो आप छोटे ग्लासों में भरकर ऊपर से फॉइल पेपर से पैक करके और इसमें एक स्टिक लगा सकती हैं। 6-8 घंटे या रात भर के लिए इसे फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें। सुबह आप इसे डीमोल्ड करें और तैयार है आपकी ठंडी ठंडी खरबूजे की कुल्फ़ी। चलिए बहनों, अब बनाते हैं आम और नारियल से बनने वाले टेस्टी से लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ताज़ा या सूखा हुआ नारियल, जिसे आप कद्दूकस कर लें, 3/4 कप आम का गाढ़ा पल्प, 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1 बड़ा चम्मच घी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच दूध पाउडर। सजाने के लिए नारियल का बूरा। एक नॉनस्टिक पैन में घी गर्म करें, इसमें किसा हुआ नारियल डालकर 2 मिनट हल्का भून लें। अब आम का पल्प डालें और लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट पकाएं। मिश्रण में कंडेंस्ड मिल्क और इलायची पाउडर डालें और गाढ़ा होने तक पकाएं। जब मिश्रण पैन के किनारे छोड़ने लगे तो गैस बंद करके इसे ठंडा होने दें। हाथ में थोड़ा घी लगाकर छोटे छोटे लड्डू बना लें। सूखे नारियल के बूरे में रोल करें, ऊपर से मनचाहे ड्राई फ्रूट से सजा कर 20 मिनट फ्रिज में रखें और ठंडे ठंडे सर्व करें। आप चाहे तो ये दोनों रेसिपी गंगा दशहरा पे बनाकर बजाय आम और खरबूजे चढ़ाने के भगवान को इसका भोग लगा सकती हैं। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते

0: अचानक कुछ याद आ जाने पर हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करती हुई एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सुधीर बाबू पांडे के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुधीर बाबू पांडे के द्वारा गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुधीर बाबू पांडे द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है बद्री प्रसाद नागर द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बद्री प्रसाद नागर द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई

0: पार्टी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुखविंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म स्टैनली का डब्बा से।

हितेश सोनिक का संगीत अमोल गुप्ते के लिखे बोल सुखविंदर सिंह की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म सैंडी का डब्बा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शान और आमिर खान की आवाज़ में फिल्म तारे ज़मीन पर से।

0: शंकर एहसान लॉय का संगीत, प्रसून जोशी के लिखे बोल, आमिर खान और शान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तारे ज़मीन पर से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांग चेनजोंगा की 5 धरोहर 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह लेख खांग चेनजोंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना के रक्षक के रूप में चित्रित करता है और इसके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा हुई और क्वाड बैठक से पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र प्राथमिकता बना हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का जल्दी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने सिंगरौली जिले के विकास के बारे में चर्चा की
1: और ये आने वाले समय की दृष्टि से हम इसका मास्टर प्लान बना रहे हैं सिंगरौली के लिए और विकास के लेकर के मध्य सरकार के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी आएंगे। और जिस प्रकार से हमने अपने निवेश और रोजगार को लेकर के गत वर्ष काम किया था उसके बलबूते पर ये पूरे हमारे आसपास के जिलों को भी रोजगार यहाँ मिले, इस तरह का प्रबंधन कर रहे हैं।
0: भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले का उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ भोपाल पहुंची है। इससे पहले आरोपी समर सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। लोगों को फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों जीएसटी

सी की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत ये केंद्र वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल और डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल स्थित रेल उत्सव हाल मदन महल में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 211 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत मलोथर में प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत रात्रि चौपाल आयोजित की गई। प्रभारी कलेक्टर ने ग्रामवासियों से संवाद कर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी H90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी

0: से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ है जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमरीका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमरीका से हटाने का फैसला ईरान, अमरीका और इसराइल के बीच

0: बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों बोलो
1: मुस्कान। सुनने वाले सभी बच्चों को प्रीति दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, अभी तो आप सभी की छुट्टियां चल रही हैं, तो कोई दादी के हाथ के पकवान खा रहा होगा, तो कोई नानी या मामी के हाथ का, कोई तीर्थ यात्रा पर होगा, तो कोई किसी पर्यटन स्थल का आनंद ले रहा होगा। पर इन सब के साथ आप सबको इंतजार होगा आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम मुस्कान का, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको आपकी दीदी कई सारी जानकारियां साझा करती हैं। साथ ही आपके साथ आपके कई साथी अपनी अपनी कविता कहानी के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं। तो आइए बच्चों, चलते हैं आज के मुस्कान के सफर पर और साझा करते हैं आज की तारीख से जुड़ी जानकारी। तो बच्चों, आज यानी 24 मई को हम हर साल राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। अब हमारे बच्चे ये जानना चाहते होंगे कि ये राष्ट्रमंडल दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो बच्चों, ये दिवस वे सभी राष्ट्र मनाते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, या यूं कहें कि ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, यानी जिन देशों पर अंग्रेजों का शासन था वे सभी देश इसे मनाते हैं। हमारे भारत पर भी अंग्रेजों का राज था, इसलिए हम भी राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। इसे 24 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का इस दिन जन्मदिन होता है। जानते हैं बच्चों, हमारा देश 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसमें शामिल हुआ। अभी लगभग 54 देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा हैं। बच्चों, अब हमारे आज के मुस्कान के सफर का अगला पड़ाव है, हमारा अगला क्रम, आओ जाने। क्योंकि इस समय हमारे बहुत से बच्चे यात्रा कर रहे होंगे, घर से बाहर जा रहे होंगे, या फिर कोई नई चीजें सीखने भी जा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा की, जानेंगे कि कैसे आपको अपना ख्याल रखना है। बच्चों, सबसे पहले तो हम जब भी कहीं बाहर जा रहे हों तो अपनी मम्मी के साथ पैकिंग करवाने में सहयोग करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको भी पता हो कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। यात्रा के दौरान अपने बड़ों का साथ कभी ना छोड़ें, हमेशा उनकी नज़रों के सामने बने रहें। अगर कोई व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते वो हमें खाने पीने को दे तो कभी ना लें। अगर कोई कुछ गलत व्यवहार करे तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं, उनकी फ़ोन नंबर याद रखें। अगर किसी कारणवश हम खो जाएं तो अपने आसपास पुलिस को खोजें और उनके माध्यम से अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करें। अगर आपने अपनी किसी पसंदीदा चीज़ को सीखने के लिए इन छुट्टियों में कोई क्लास ज्वाइन की है, तो वहाँ आते जाते समय या क्लास में भी अगर आपको किसी का भी कोई व्यवहार ठीक नहीं लगता तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं। बच्चों, अगर आप किसी भी वजह से अकेले घर से बाहर जा रहे हैं तो घर में पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं और कब तक लौटेंगे। रास्ते में जाते समय भी अपने चारों तरफ का ध्यान रखें ताकि आप सुरक्षित बने रहें। बाकी मम्मी पापा के साथ जाते समय तो हम सुरक्षित होते ही हैं और उनके साथ अपने सफर का आनंद बड़ी खूबसूरती के साथ लेते हैं।
0: बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी कई सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे अपनी अपनी कविता और कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम बारी बारी से जानेंगे बच्चों से कि वो हमारे लिए क्या तैयार करके आए हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बातें हो जाएं। तो बच्चों, गर्मी की छुट्टियां कैसी बीत रही हैं? अच्छा, बारी बारी से सब बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है इन छुट्टियों में।
2: मैं बैडमिंटन सीख रही हूँ, मैं डांस सीख रही हूँ,
3: मैं फुटबॉल सीख रहा हूँ।
0: इसका मतलब है सभी बच्चे अपनी अपनी छुट्टियों का उपयोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो उनके आगे कुछ ना कुछ काम तो आने वाला है। अच्छा, ये बताओ, ये हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हमारे लाइफ में क्या काम आ सकती हैं, क्या सिखाती हैं हमें?
3: अनुशासन।
0: और क्या सीख सकते हैं?
2: कॉन्फिडेंस।
0: कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। कि आगे जाके अगर हमें कभी कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ये जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हमें ये काम आ जाता है आगे जाके कि हम कोई भी निर्णय बड़े आराम से ले सकते हैं। अच्छा, अब सब बच्चे अपना अपना नाम बताते जाएंगे और क्या तैयार करके आए हैं वो बताते जाएंगे। बेटा, आपका क्या नाम है?
4: मेरा नाम अनन्या जैन है। मैंने एक लघु कथा, उसका शीर्षक है पुरानी किताब।
0: अच्छा, अब हमारे साथ अनन्या है और अनन्या हमारे लिए एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हैं।
4: स्कूल की लाइब्रेरी में आर्यन को एक बहुत पुरानी किताब मिली। उसने पन्ने पीले पड़ चुके थे और ऊपर धूल जमी थी। बाकी बच्चे नए किताब और रंगीन किताबें चुन रहे थे, इसीलिए किसी ने उस किताब की तरफ ध्यान नहीं दिया। आर्यन उसे घर ले आया। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसने महान लोगों के शीर्षक और सफलता की कहानियाँ थी हर पन्ने पर नई नई सीख छिपी थी। अगले दिन शिक्षक ने पूछा, तुमने सबसे अच्छा क्या चीज़ सीखी? आर्यन मुस्कुराकर बोला, सर, पुरानी चीज़ें हमेशा बेकार नहीं होती, उनमें अनुभव और सीख छिपी होती है। उस दिन से कई बच्चे भी लाइब्रेरी की पुरानी किताबें पढ़ने लगे।
0: बहुत ही अच्छी कहानी थी। इस कहानी का मतलब ये था कि कोई भी चीज़ कभी पुरानी नहीं होती। दूसरी बात ये कि पढ़ने की जो आदत हमारी ख़त्म हो गई है, वो पढ़ने की आदत हमें दोबारा से डालनी चाहिए। पढ़ना ये नहीं है कि हमने अपना कोर्स कवर कर लिया, ट्यूशन में पढ़ लिया, बल्कि हमारे कोर्स में जो चीज़ें नहीं हैं वो भी नई नई चीज़ें हमें सीखना है, पढ़ के जानना है। और एक और चीज़ इस कहानी से हम सीखते हैं कि जो अनुभव होता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। किसी भी चीज़ का अनुभव हो, चाहे वो हम अपने घर के बड़ों से ले सकते हैं अनुभव, और चाहे अपने खुद के अनुभव से। अब हमारे साथ कौन जुड़ा है, अपना नाम बताओ बेटा।
5: मेरा नाम यशी जैन है।
0: यशी, यशी आप क्या तैयार करके आए हो?
5: मैंने एक लघु कथा तैयार करी है जिसका शीर्षक है समय की कीमत।
0: बहुत अच्छे, चलो एक और छोटी सी कहानी हमारे बच्चों के साथ साझा कर रही हैं यशी।
5: आरव हमेशा अपना काम कल पर टालता था, होमवर्क अधूरा रहता था और परीक्षा में भी उसके कम अंक आते थे। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बंद घड़ी दी और कहा, जो समय रुक जाता है वह किसी के काम नहीं आता। आरव बात समझ गया और उसने समय से पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी।

0: अब उसे समझ आ चुका था कि समय की कदर ही सफलता की पहली सीढ़ी है।
1: तो भाई बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये छोटी सी जो कहानी यशी ने हमें सुनाई कि समय कितना कीमती है, हमें समय का एक भी पल नहीं गंवाना चाहिए। अब आगे कौन क्या सुना रहा है?
2: हम दोनों साथ एक की कहानी सुनाएंगे। पहले ये आती है, फिर आती मैं।
1: अच्छा, तो कहानी तैयार की है कि कविता?
2: कविता
1: अभी, क्योंकि ये कहानी बोली थी। अच्छा, दोनों जन ने एक ही कविता तैयार की है। बिल्कुल सुनेंगे तुम दोनों की कविता। पहले दोनों जन अपना अपना नाम बताओ। क्या नाम है आपका?
2: शानवी जैन।
1: शानवी, और आपका?
3: कृतिका जैन।
1: कौन सी कविता है?
3: काका लाए एक कार।
1: काका लाए एक कार। तो बच्चों तैयार हो जाओ दोनों से एक ही कविता सुनने के लिए। आधी एक सुनाएगी और आधी दूसरी सुनाएगी। काका लाए एक कार।
3: काका लाए एक कार, लेकर उसको गए बाजार। एक दो तीन चार, उसके पहिए पूरे चार। पांच जगह हम गए घूमने, छह गोलगप्पे खाए हमने।
2: सात बार शीशी की, आठ गिलास पानी पिया। नौ बजे हम घर को आए, पूरी बात बताए सबको। कहा हमने दस बार, सबसे अच्छी अपनी कार।
1: बहुत अच्छे, सबसे अच्छी अपनी कार, क्योंकि इनके काका जी कार लाए थे, तो ऑब्वियसली है कार तो अच्छी होनी ही थी, है ना। और सब लोग मिलके बैठ के एक साथ जाते हैं घूमने के लिए। कौन कौन कहाँ कहाँ गया गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए?
2: नानी
1: के घर,
3: मामा की शादी में।
1: अच्छा, भगवान के दर्शन करने गए। भाई ये अच्छा रहता है, गर्मी की छुट्टियां आती हैं तो सबसे ज्यादा खुश होती हैं मम्मियाँ, क्योंकि उन्हें अपने अपने मायके जाने को मिलता है, है ना। तो अब इनकी मम्मियों से जब हम बात करेंगे तब हम उनके अनुभव भी लेंगे। बाकी अभी तो बच्चों की खुशी दिख ही रही है छुट्टियों की। हाँ, तो अब आगे और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है, कौन क्या सुना रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
4: अनुमित।
1: अनुमित क्या सुना रहे हो?
4: कविता।
1: कविता, एक और कविता। कौन सी कविता है बेटा?
4: देशभक्ति।
1: देशभक्ति से जुड़ी हुई कविता। चलो बच्चों, तो आज हम देशभक्ति के रंग में रंग जाते हैं।
2: मिट्टी की खुशबू, वीरों की शान, तिरंगे से ऊंची भारत की शान। देश के लिए जीना और देश के लिए मरना, यही है हमारा अभिमान।
1: अनुमित, आपकी उम्र क्या है बेटा? 8 साल। देखो, इतनी छोटी उम्र में अपने देश के लिए इतनी अच्छी भावनाएं रखना, वाकई में हमारे बच्चे देश से कितने जुड़े हुए हैं ये बात हम समझ सकते हैं। अब और कौन हमारे साथ क्या साझा कर रहा है? बेटा नाम बताओ सबसे पहले अपना।
5: निशान जैन।
1: निशान, क्या तैयार करके आए हो?
5: मेरा परिवार।
1: मेरा परिवार क्या है, कविता है कि कहानी?
5: कविता।
1: कविता, चलो सुनाओ।
5: दादी मेरी कहे कहानी, दादा दे पौधों को पानी, दीदी भैया खेल खिलाते, मम्मी पापा शेयर कराते।
1: बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी कविताएं ये छोटे छोटे से बच्चे तैयार करके आए हैं। अब अगला और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
6: आराध्या जैन।
1: और आराध्या क्या सुना रही है हमें?
6: आज मैं आपको एक कहानी सुनाने।
1: कहानी, अच्छा चलो बढ़िया है। कौन सी कहानी है?
6: दो बैलों की कथा।
1: दो बैलों की कथा सुनाओ।
6: दो बैलों की कथा है। पहली बैल का नाम होता है हीरा, दूसरे का मोती। दोनों अपने मालिक जूरी के साथ रहते थे और जूरी उनसे जो भी काम कराता वह करते और जो खाने को देता वह सिर झुका के खा लेते। एक दिन जूरी का साला आया और उन दोनों बैलों को लेके अपने यहाँ लेके चला गया। उन दोनों बैलों को सूखा भूसा दे दिया और एक मोटी सी रस्सी से बांध दिया। वो दोनों जब वह सब खाने बैठे तब वहाँ से एक छोटी सी बच्ची आई और अपनी एक एक रोटी खिला के चली गई। फिर जब वो चली गई तो उन दोनों बैलों ने अपने मुख्य भाषा में बातें की कि अगर हमारे पास वाणी होती तो हम अपने मालिक से पूछते कि उनने हमें क्यों भेजा यहाँ पे सूखा भूसा यहाँ पे दे रहे हैं। जब सब सो गए फिर वो दोनों अपने मालिक के पास चले गए। जब जूरी सुबह उठा उन दोनों को देख के जूरी बहुत खुश हुआ। फिर गांव वाले तालियां बजाने लगे और गांव वाले उन दोनों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने लगे।
1: बहुत ही अच्छी कहानी है दो बैलों की कथा। ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, हमारे सुनने वाले सभी बच्चों को हम बता दें कि ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है जिसमें दो मूक पशुओं हीरा और मोती की कहानी बताई गई है। इस कहानी के माध्यम से ये भी बताया गया है कि दोस्ती क्या होती है, दोस्ती के साथ साथ स्वामी भक्ति क्या होती है, ये भी इस कहानी के द्वारा बताया गया है। तो अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है, नाम बताओ बेटा आप अपना।
7: मेरा नाम तरुष जैन है।
1: तरुष क्या सुना रहा है?
7: मैं कविता यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ।
1: कविता, चलो भैया एक और कविता हमारे साथ लेके आए हैं तरुष।
7: सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे टिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुटमा, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख फंसा, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार।
1: एक छोटी सी चिड़िया की कहानी कविता के माध्यम से हमने तरुष से सुनी। सच बात है, चिड़िया हमें पंख फैला के उड़ना ही नहीं सिखाती, बल्कि सिखाती है कि हम अनुशासन से यदि अपने माता पिता की बात मानें तो हम बड़े आराम से पूरे आसमान को अपने वश में कर सकते हैं। अब आगे और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बताओ।
8: वीर जैन।
1: वीर क्या तैयार करके आया है?
8: कविता।
1: कौन सी कविता है?
8: फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी ढालियों से नित सीखो शीश झुकाना, दूध थता पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना।
1: देखो वीर ने कितनी अच्छी कविता सुनाई है। प्रकृति की हर एक चीज़ हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए और अपनी हर एक चीज़ को बिना किसी शर्त के साझा करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति कभी भी हमसे किसी चीज़ की मांग नहीं करती, बस देती है और देती है, वो हमें देना सिखाती है। अब और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
9: आगम जैन।
1: आगम, आगम क्या तैयार करके आए हो?
9: मैं एक कहानी।
1: कहानी, कौन सी कहानी है?
9: दो दोस्तों की कहानी।
1: दो दोस्तों की कहानी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी भी एक कहानी हमने सुनी, वो भी दोस्ती पे आधारित थी, ये भी है, सुनाओ।
9: दो दोस्त थे, एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था हामिद। वो लोग रेगिस्तान को पार कर रहे थे। अमन की लड़ाई हो गई हामिद से कुछ देर बाद, तो अमन ने हामिद को थप्पड़ मार दिया, तो हामिद ने रेत पर जाके अपनी उंगली से लिखा कि आज अमन ने मुझे थप्पड़ मारा। और फिर कुछ देर बाद उन्हें प्यास लगने लगी, तो अमन को दूर से एक तालाब जैसा कुछ दिखा, तो उन लोगों को लगा कि वहाँ पे पानी है। वो लोग दौड़ के गए, अमन उस तालाब पर डूब गया, लेकिन वो तालाब नहीं था, दलदल था। फिर अमन गिर गया था दलदल में, तो फिर हामिद ने उसके अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। फिर अमन ने पत्थर पर फिर से लिखा कि आज अमन नहीं हामिद ने मेरी जान पर खेलकर रक्षा की। फिर हामिद ने यह पूछा कि जब मैंने तुम्हें मारा थप्पड़ तो तुमने रेत पर क्यों लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर क्यों लिखा। तो अमन ने हामिद को यह जवाब दिया कि जब तुमने मुझे मारा तो मैंने इसलिए वो रेत में लिखा कि जब हवा चलेगी तो वो मिट जाएगा, और जब तुमने मेरी जान बचाई तो मैंने पत्थर पर इसलिए लिखा क्योंकि जितनी भी आंधी चल जाएगी लेकिन पत्थर में से वो जो मैंने लिखा है वो नहीं मिटेगा।
1: बहुत अच्छी कहानी है। देखो, दो दोस्तों की ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें अच्छी चीजें याद रखनी चाहिए और बुरी

0: चीज़ों को भूल जाना चाहिए। अच्छी चीज़ें हमेशा साथ जाती हैं और बुरी चीज़ें अगर हम याद रखेंगे तो सब कुछ खराब कर देती हैं। क्या नाम है? अभ्यांक। अभ्यांक कितने साल के हो?
1: 4
0: साल के हो। अच्छा, पढ़ते हो?
1: हाँ।
0: कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
1: LKG
0: में पढ़ते हो। क्या सुनाओगे हमको? सुनाओ।
1: कविता।
0: कविता सुनाओ।
1: बालक माँ का प्याला ना एक हमाल सत्य महान दाहिन।
0: सही बात है, देश हमारा सबसे महान, और इस महान देश के नाम के साथ समय हो रहा है सभी बच्चों से विदा लेने का। मेरे साथ सब बोलेंगे जय।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। ये आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसमें पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत की आवाज़ में फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से।

जतिन ललित का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, अभिजीत की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म का नाम है यस बॉस।

0: जतिन ललित का संगीत, जावेद अख्तर के लिखे बोल, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म यस बॉस से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांग चेनजोंगा की 5 धरोहर 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। सरकार वजन और माप की जाँच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जाँच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दिल्ली से आई 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। आज शाम उनका अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कल तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। और IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में अब से कुछ देर में 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की संध्याकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगा। रात 7:21 पर सुनेगा कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसके अंतर्गत रात 7:30 से प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जहां ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य विषय पर श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे विशेष विशेषज्ञ डॉक्टर के निमा। कार्यक्रम सुर्खियों में सुनिएगा रात 8:00। 8:15 पर सुनिएगा इंदौर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की, विषय होगा जल जीवन मिशन। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में रात 10:00 सुनिएगा पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है सुधीर बाबू पांडे के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। लीजिए प्रस्तुत है सुधीर बाबू पांडे के आवाज़ में ये पहला लोकगीत।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, शाम के 5 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवानी। तो मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी
1: और मैं अनुभूति, आप सभी का स्वागत करते हैं। वैसे श्रोताओं, आज है रविवार का दिन, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारियां, जानेंगे आज के दिन के बारे में और साथ ही आपको देंगे आपकी पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ टिप्स।
0: इसी के साथ हम आपसे बात करेंगे बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जो हमारे आसपास चल रही है, स्पेशली एआई के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारी और आपकी जनरेशन में बात करने लायक। लेकिन अनुभूति, मुझे लगता है कि कार्यक्रम की शुरुआत के पहले क्यों ना हम हमारे श्रोताओं से हर कार्यक्रम के पहले जो सवाल पूछते हैं वो सवाल पूछ लें।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं,
1: और आज का दूसरा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है।
0: तो दोस्तों, इन दोनों सवालों के उत्तर आप ढूंढ के रखिएगा, हम आपको कार्यक्रम के अंत में जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमें कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए, तो क्यों ना शुरुआत करने के पहले सुने इस कार्यक्रम का पहला गीत।

0: अनुभूति, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कभी सोचा है या इस बात पे गौर किया है कि रेडियो में भी एक अलग सी ही बात होती है। टीवी में चेहरे दिखते हैं, सोशल मीडिया में हर चीज़ें, जो भी कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, हर चीज़ बस कुछ कुछ सेकंड में या तो आगे बढ़ जाती है या हर एक सेकंड की अपडेट होती है। लेकिन रेडियो, रेडियो आपके साथ ठहर जाता है, आपके साथ रहता है।
1: बिल्कुल, आपके दिन का हिस्सा बनकर, सुबह की चाय के साथ, ऑफिस जाते रास्तों में या देर रात की खामोशी में, धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हमेशा साथ चल रहा हो। इसीलिए रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक सच्चा साथी भी लगता है।
0: और यही तो आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत है। जब देश आज़ादी के बाद नए सपने देख रहा था, तब आकाशवाणी लोगों तक जानकारी, संस्कृति, संगीत और उम्मीद लेकर पहुंची।
1: बिल्कुल, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर आकाशवाणी बना, और फिर ये सिर्फ एक माध्यम नहीं रहा।

0: यहीं से हुई है और इसी खूबसूरत सफ़र का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है हमारा अपना आकाशवाणी इंदौर।
1: बिल्कुल, जो कई सालों से मालवा की मिट्टी की खुशबू, यहाँ की बोली, यहाँ का संगीत, यहाँ के लोगों की भावनाएं लगातार लोगों तक पहुँचाता रहा है।
0: और शायद मुझे ऐसा लगता है कि यही रीज़न है आज भी हमारे लिसनर्स इतने सारे हैं, हमें पूरे देश भर से कॉल आते हैं। अनुभूति, अभी मैंने फरमाइश किया था कुछ समय पहले और तुम मानोगी नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हर जगह राजस्थान से हमारे पास कॉल्स आए, और जब ऐसा होता है तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। और यही वजह है कि जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों की बात करते हैं तो उसमें आकाशवाणी इंदौर जैसी अनगिनत आवाज़ों की मेहनत, अपनापन और यादें भी शामिल होती हैं।
1: ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा माधवी, कितना खूबसूरत लगता है ना ये जानकर कि आकाशवाणी आज भी लोगों की यादों और भावनाओं में उसी गर्मजोशी के साथ मौजूद है।
0: और शायद यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आवाज़ों का ये रिश्ता आज भी लोगों के दिल में वैसे ही पहुंचता है।

0: तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना, ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें टाइम मैनेजमेंट आता हो। तो टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दिन की योजना बनाइए, यानी कि प्लानिंग कीजिए। कार्यों को प्राथमिकता दें, यानी कि जो लाइफ में भी करना चाहिए प्रायोरिटाइज कीजिए। कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिसे पहले करना चाहिए, कौन इंसान, कौन सा काम, कौन सा एक एक्टिविटी है जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, उस हिसाब से आगे चलिए। और डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक मोड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो डू नॉट डिस्टर्ब के मोड का उपयोग करें। किसी तरह के कोई डिस्ट्रैक्शन या किसी तरह के कोई प्रॉब्लम को बीच में आने ना दें और अपने टाइम को मैनेज करके चलें।
1: बिल्कुल, साथ ही आप टू डू लिस्ट बनाकर और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अपने कामों को समय पर पूरा करें और प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसे हम बोलते हैं कि काम टालने की आदत से बचें, और खुद को एक प्रॉपर तरीके से अलाइन रखें।
0: प्राथमिकता तय करें, यानी कि प्रायोरिटाइज करें। योजना बनाएं, यानी कि पहले से प्लानिंग करें। हर दिन के अंत में अगले दिन के कार्यों की जो टू डू लिस्ट है उसको पहले से ही तैयार कर लें।
1: साथ ही ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें, डिसाइड करें, जो स्पेसिफिक हों और मेजरेबल हों, साथ ही आप उन्हें पा सकें। छोटे छोटे लक्ष्य आप बनाइए, धीरे धीरे उनको अचीव करिए और फिर बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़िए। और इसी तरह टाइम बाउंड तरीके से रेलेवेंसी के साथ आप अपने गोल्स पा सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि समय सीमा निर्धारित जरूर करें। डेडलाइन सेट करने से आपका जो काम है वो एकदम प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर करें। काम के दौरान फोन या सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और एकाग्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने के लिए, जैसा कि हमने पहले बात की, डू नॉट डिस्टर्ब का प्रयोग करें। साथ ही अगर आप किसी कंपनी में हैं, किसी बड़े पद पर हैं या घर में भी हैं और वहाँ भी काम करते हैं, तो अपने काम को सौंपना भी सीखें, यानी कि अपने टास्क को डेलीगेट करें। हर काम खुद ना करें, दूसरों की मदद जरूर लें और अपने कार्यों को बांटें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि लगातार काम बिल्कुल ना करें, ब्रेक जरूर लें। छोटे छोटे ब्रेक लेने से आपकी जो एकाग्रता है और जो ऊर्जा है वो निरंतर इसी तरह बनी रहती है ना माधवी?
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुमने एक बात तो सही कही कि अपने टास्क को डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान की काम करने की एक क्षमता होती है। उस क्षमता से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता। तो अगर डेलीगेट कर दिया जाए तो लोगों की तरफ काम ट्रांसफ़र हो जाता है और पूरे काम को करने में हेल्प मिल जाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इन सारी टिप्स से आपको कुछ समझ में आया हो तो उन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की दुनिया में, अपनी लाइफ में अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें।

0: अनुभूति, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान की पर्सनालिटी सिर्फ उसके लुक से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से और उसके कॉन्फिडेंस से, इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है।
1: ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कई लोग बहुत साधारण दिखते हैं, लेकिन उनकी बात करने का तरीका, सोच और एनर्जी इतनी अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है कि हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है।
0: और कई लोग बहुत सुंदर, बहुत अच्छे दिखने के बाद भी जहाँ अपना मुंह खोलते हैं, वहीं समझ में आ जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरह के घर से आए हैं और क्या उनकी पर्सनालिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, उसका मतलब ये नहीं होता कि लाउड होना है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि अंदर शांति हो और आत्मविश्वास भरा हुआ हो।
1: एग्जैक्टली, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला इंसान हर जगह खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी ओरिजिनलिटी बनाए रखता है।
0: और जो इंसान अपनी ओरिजिनलिटी ही खो दे, वो इंसान खुद को खो देता है। और शायद कॉन्फिडेंस भी वही चीज़ है। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब इंसान खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाता है।
1: आजकल लोग खुद को दूसरों से कंपेयर भी करते हैं और कंपेयर करते करते अपनी यूनिकनेस, यानी कि अपनी खुद की जो पहचान है, खुद की जो आइडेंटिटी है, वो भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब आपको लगता है कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो आप धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाते हैं। लेकिन असल में अपने आप को भूलना, अपनी यूनिकनेस को भूलना, अपनी ओरिजिनलिटी को भूलना एक बहुत बड़ा सिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप वो भूल गए मतलब आप खुद को भूल गए। आजकल सोशल मीडिया पर सबकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अपनी कमियों के साथ खुद को पसंद करना सीख जाते हैं। अपने लिए आवाज़ उठाना, अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स के बारे में बात करना, ये सब भूलना नहीं है, इनको जारी रखना है।
1: बिल्कुल, और ये कॉन्फिडेंस हमें रातों रात यानी कि ओवरनाइट नहीं आएगा, वहीं छोटी छोटी हैबिट से उसे बनाया जा सकता है। जैसे खुद से अच्छी तरह बात करना, यानी कि इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप खुद के साथ बनाना, अपने गोल्स पर काम करना और नई चीज़ें सीखना।
0: मैंने नोटिस किया है कि जो लोग खुद को लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो नेचुरली ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगने लग जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे अपनी मेहनत पर किस तरह काम कर रहे हैं और उसे उन पर भरोसा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
0: और ऐसा भी है अनुभूति कि पर्सनालिटी सिर्फ बोलने से नहीं आती, सुनने से भी आती है। जो इंसान दूसरों को ध्यान से सुनता है, उनका इम्प्रेशन या उस चीज़ की बात, उस बात का इम्प्रेशन अलग ही होता है।
1: बिल्कुल, काइंडनेस भी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है माधवी। एक अच्छा दिल हमेशा सबसे ज़्यादा याद रखा जाता है।
0: सही कह रही हो तुम, काइंडनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर

0: आपने कोई भी हरकत इस तरह की करी है जिसमें सामने वाले को दुख पहुंचा है, या आपने किसी को जानबूझकर दुख पहुंचाया, या किसी भी तरह की ऐसी वाणी अपने मुंह से निकाली जिससे सामने वाले को हर्ट हुआ है, तो वो इंसान उस चीज़ को कभी नहीं भूलता। और ये तो हम सब जानते हैं कि बोला हुआ कभी वापस नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए काइंडनेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है खुश रहने के लिए भी पर्सनालिटी से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, क्योंकि जब इंसान अंदर से खुश होता है तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप दिखने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हैप्पीनेस हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं आती। कभी कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, पसंद का गाना सुनना, या खुद के लिए थोड़ा समय निकालकर खुद के साथ बैठना भी बहुत सुकून देता है।
0: हाँ, और सबसे खास बात यह है कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद से जैसे बात करेंगे वैसा ही हम फील करने लग जाते हैं। हमें अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि हम कितने स्ट्रांग हैं और हम कैसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं।
1: और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रांग पर्सनालिटी वाला इंसान दूसरों को नीचा ना दिखाकर उन्हें इंस्पायर करे और उन्हें भी खुद के साथ आगे बढ़ता लेकर चले।
0: और इसीलिए मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना चाहिए, और अगर जो खास लोग हैं जिन्हें पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी स्ट्रेंथ को अपने पास पकड़ के जकड़ के रखें, उसे छोड़े नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई खास बात ज़रूर होती है, तो अपनी खास बात को पहचानो, उसको पकड़ के रखो, उसे कभी छोड़ो मत, और उसके साथ अपने जीवन को जियो।
1: बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा दूसरों में पॉजिटिविटी फैलाने का काम करते हैं।
0: पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और बाहरी सुंदरता से ज़्यादा अंदर की सुंदरता बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए शायद बहुत ज़रूरी बात हमें बचपन में भी सिखाई जाती थी कि कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना है।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: अनुभूति, आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की बातें हो रही है। हर जगह किसी छोटी से छोटी चीज़ को लेकर या फिर किसी बहुत बड़े डिसीजन को लेकर हर जगह AI का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी जब AI को खेती में भी इस्तेमाल करने लगा। मतलब आप सोचो कि खेती जैसी चीज़ जो इंसान लेबर, मैनुअल लेबर से करता है, उसमें AI का काम कैसे आ सकता है। लेकिन आया, और कितनी क्रिएटिव चीज थी।
4: बिल्कुल, पहले लोग सोचते थे कि AI सिर्फ कंप्यूटर्स और रोबोट्स तक सीमित है, लेकिन अब ये एग्रीकल्चर जैसी जरूरी फील्ड में भी किसानों की निरंतर मदद कर रहा है।
3: सच में टेक्नोलॉजी और खेती का ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफी फैसिनेटिंग है। सोचो जो काम पहले किसानों की अंदाजों से यानी कि इसमें इतना उसमें इतना ऐसे करके होता था, AI अब उसकी सही जानकारी देता है और एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस में सारा काम होता है।
4: जैसे AI की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, फसल को कितने पानी की जरूरत है और कौन सी बीमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है।
3: कितनी अच्छी बात है ये, इससे किसानों का समय और मेहनत दोनों बचती है।
4: बिल्कुल, और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है माधवी कि अब ड्रोन्स भी खेती के इस्तेमाल में काम आ सकते हैं। वे ऊपर से पूरी फसल की तस्वीर लेकर ये बता देते हैं कि कहाँ समस्या है।
3: और जो AI का वेदर प्रेडिक्शन है वो भी काफी मदद करता है। किसान पहले मौसम पर पूरा निर्भर कर लेते हैं कि किस तरह का मौसम होने वाला है, और अब टेक्नोलॉजी उसे अलर्ट कर देती है कि ऐसा सच में होने वाला है और इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं।
4: ये तो सच में बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल भी हो गया है।
3: और यही टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात है कि वो लोगों को और एम्पावर्ड बनाता है। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो अगर सही तरह से यूज की जाए तो एनवायरनमेंट को कम नुकसान भी होगा और लोगों की काफी तरह से मेहनत बच भी जाएगी।

0: तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपको आज के प्रश्नों के उत्तर बताने का।
1: तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न था वो ये था कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि पृथ्वी पर कुल मिलाकर 5 महासागर हैं।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, जिसका उत्तर है पैसिफिक ओशन। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको आज के प्रश्नों के सही उत्तर मिले होंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत अनुभूति
1: और माधवी को।
0: नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज हम कर रहे हैं त्रिशूल फिल्म के इस दो गाने के साथ, जिसमें आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और येसुदास की। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है खयाम का।

लीजिए, सुनिए आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। लक्ष्मीकांत परेलाल के संगीत निर्देशन में इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है बंदिश।

रोज मूवीज के बैनर तले बनी फिल्म द ट्रेन का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था, धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने और आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में लीजिए सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है तीन देवियाँ। इस गीत का संगीत दिया था एस डी बर्मन ने।

संगीत में लीजिए, अब सुनिए निशान फिल्म का ये दो गाना जिसे गुलशन बावरा ने लिखा, राजेश रोशन ने संगीत दिया और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

जुल्म की पुकार इस फिल्म का गीत लीजिए, आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ों में। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा है और संगीत है सोनिक ओमी का। लीजिए सुनिए।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इंतकाम फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में लीजिए सुनिए गीत फिल्म का ये दो गाना। बोल हसरत जयपुरी के हैं और इसकी धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए जांबाज फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार और सपना की। इंदिवर ने इसे लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं उमेश भट्ट। इनसे सुनिए ये गजल।

आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं उमेश भट्ट। इनकी आवाज में लीजिए सुनिए कंवर जलालाबादी की लिखी हुई ये नज़्म।

इसी के साथ सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे उमेश भट्ट की गाई चंद गजलें। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में आज की कलाकार हैं साधना उपाध्याय और साथी।

इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। लोक संगीत में आज आप सुन रहे थे साधना उपाध्याय और साथियों के गाए लोकगीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की चार सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी होगा शाम 7:20 पर। इसमें सुनिएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर की गई आज की बात। सुरेंद्र श्रीवास्तव का कविता पाठ आप सुनेंगे, साथ ही इसमें होगा लोक संगीत। डगर विकास की ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे रात 8:15 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत लेकर हम आएंगे रात 9:15 पर। आपके भेजे हुए पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन हम प्रस्तुत करेंगे रात 9:30 पर।

अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, इसका अनुप्रसारण हम करेंगे रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो ये थे कार्यक्रम जिन्हें आप आज देर रात तक सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।

0: जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: तेरी वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर कल उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल की ट्यूषा शर्मा मृत्यु मामले में आज दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एयर और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि IIT मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा। यह दल समग्र IT अवसंरचना की मजबूती, लॉगिन प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली, भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के रूप में विशेष रूप से है।
6: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हो, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
5: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेश भर में वहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरिया, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण, पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। वहीं भारत भवन भोपाल में सदानीरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

0: हैं।
1: समाचारों में आपका स्वागत है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार ने मेडिकल टीम से अनुरोध किया था कि वे एक बहुविषयक फॉरेंसिक पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाएं और उनकी उन चिंताओं की स्वतंत्र रूप से जांच करें। गौरतलब है कि 33 वर्षीय त्विशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भोपाल में केंद्र ION डिजिटल जोन प्रेस्टीज श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी कोकता बायपास रायसेन रोड और ION डिजिटल जोन RGPM सनखेड़ी दानिश कुंज कोलार रोड पर स्थित है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था और यह इसी वर्ष जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। अगले 4 दिनों तक लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल से शुरू हो रहे नौतपा के दौरान भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं शहडोल जिले में झुलसा देने वाली गर्मी का असर जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है। जिले का सबसे बड़ा बाण सागर बांध 56% तक खाली हो चुका है। छोटे बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। उपवन संरक्षक अनादि बुधोलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। नर्मदापुरम जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सबसे पहले सबसे दूर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ जनजाति ग्रामों तक पहुंचकर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: दादा, कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला मारा सभी किसान भाई बहन का संध्या कोठारी को राम राम। भाई होण घनी सारी योजना ने छे लाभ लेवा और उनकी जानकारी भी रखा। जैसा कि आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, यह योजना ऐसी छे जो असंगठित क्षेत्र छे जहाँ अपन एक केला के काम करी रहा हो, छोटो मोटो काम करी रहा हो उनका लेन छे, और 18 से 40 वर्ष की आयु तक का जो हमारा श्रमिक छे वो एकाम भाग ले सकर इन्हीं योजना को लाभ उठाई सकर। एकाम उन्हें व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये तक होनी चाहिए और 60 वर्ष की आयु तक का बाद एकाम जो पेंशन मिलेगी वह मिलेगी 3,000 रुपया प्रतिमा। अब अगर अपन का एकाम भाग लेनो तो अपन कोई भी व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर जाई ना अपनो रजिस्ट्रेशन करा लेवा। ओका में आवेदक जो रजिस्ट्रेशन करेगा ओका जो अभी लिखा होएगा ओका केवल आधार कार्ड, बैंक की पासबुक आना मोबाइल नंबर अपन का देनो होएगा। यो दई ना आना जानकारी उनका दई ना अपन एका में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अपनो कार्ड बना सका। एका में थोड़ो सो फायदो भी है अपन का कि श्रमिक अंशदान में अपन 55 रुपया से लगे ना 220 रुपया तक की योजना को अपन प्रवेश ले सकें। अब एका में उम्र का हिसाब से होएगा कि एकदम 18 साल की उम्र में अपन करा ले तो अपन के एकदम कम पैसा लगेगा, कदि अपनी उम्र 30 साल की होगी तो काम अपन का पैसों ज़्यादा लगेगा। तो अपनी उम्र का हिसाब से जो भी होगा जो बनेगा अपनों मंथली पैसों वो अपनों काम दे सकें। साथ ही में आवेदक की कदी मृत्यु हो जाए तो ओका उपरांत जो व्यक्ति उनका ऊपर आश्रित रहेगा ओक भी 50% की पेंशन आजीवन ओक मिलेगा। और आवेदक अगर चाह के 10 वर्ष का बाद पेंशन का नहीं जाए ना नहीं चाहिए ना ओका जो पैसों उनने जमा करो ना उनका जो पछो चाहिए तो 10 साल का बाद जो पैसा तुम्हारा इन योजना में जमा होएगा वो मैं ब्याज आपको वापिस मिली जाएगा। तो एम अपन का फायदोज फायदो है, कभी ऋण देवा तो पेंशन मिलेगी और कभी बीच में 10 साल बाद आवश्यकता पड़ेगी तो यो मान चलो कि पैसा अपना सेविंग हुई गया जमा होगा ना देखो ब्याज सहित अपन का मिली भी जाएगा। तो योजना न को जानकारी रखा और लाभ लेवा भाई हूँ आप सब न कहूँ योज कहूँगा न कार्यक्रम का आगे बढ़ावागा आ न हम सुनागा कविता पाठ हमारा कवि छे डॉक्टर सुरेंद्र श्रीवास्तव।
1: यो राम राम, मैं कुछ कविता लेकर आया हूँ किसान की पुकार। नाम है सुरेंद्र श्रीवास्तव। सुबह सुबह जब सूरज जागे धरती माँ का आंचल भागे, ओस की बूंदे मोती बनकर खेतों में हरियाली सजे, तब हल लेकर एक किसान अपने सपनों को बोने निकले, माथे पर पसीना चमके आंखों में उम्मीदें पले, वह किसान है भारत का। धरती जिसका मान है उसकी मेहनत से ही चलता है पूरा हिंदुस्तान है। ना गर्मी से वह डरता है ना सर्दी उसे रोकती है, बरसातों की तेज हवाएं उसकी राहें टोकती है, फिर भी अपने खेतों में वह दिन रात मेहनत करता है। अपने बच्चों के भविष्य की चुपके चुपके चिंता करता है, कभी सूखा आ जाता है कभी बाड़े सब बहा लेती है, कभी ओलों की मार अचानक सारी मेहनत ढा देती है। जिस फसल को सींचा उसने खून पसीने से महीनों तक, वही फसल जब नष्ट हो जाए टूटे सपने पल भर में सब, फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए दुनिया को रोटी देता, खुद भूखा रह जाता लेकिन हर घर का चूल्हा जलता। कितनी विडम्बना है देखो, जो सबका पेट भरता है आज वही किसान बेचारा अपना दर्द छुपाता है। कर्ज के बोझ तले दबकर कितने सपने टूट गए, कितने घर भी छूट गए, उसके दिल को चीर गई मजबूरी की काली रातें, उसकी खुशियां निगल गई। मंडी में जब फसल लेकर आशा से वो जाता है, दाम सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर भर आता है। जिस गेहूं को सोना समझा, जिस कपास को धन माना, उन्हें पौने दामों में ही उसे सब कुछ बेच

कर आना, फिर घर जाकर बच्चों की छोटी छोटी मांगे सुनता, बेटी की शादी की चिंता, बीमार माँ का दर्द भी चुनता, पत्नी की सुनी आंखों में सपनों की बुझती लो देखे, फिर भी हिम्मत करके अगली फसल के बीजों को फेंके, क्योंकि उसे भरोसा है धरती माँ की ममता पर, शायद अगले ऋतु में फिर से बरसेगी खुशियों की फुहार। कागजों की योजनाओं में किसानों के सपने बहते हैं, कोई पूछे उस मजदूर से जिसने जीवन खेतों को दिया, जिसने अपने तन का हर कतरा भारत माँ को अर्पण किया, वह किसान जब थक जाता है आसमान को ताकता है, शायद कोई उसकी पीड़ा भगवान तक रखता है, उसके हाथों की लकीरों में देश का भविष्य बसता है, उसकी मेहनत के कारण ही भारत का मान सस्ता है, यदि किसान ही टूट गया तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे हर घर में अन्न रहेगा, कैसे भारत स्वर्णिम होगा, इसलिए अब समय यही है उसकी पीड़ा को पहचानो, सिर्फ तालियों नारों से नहीं उसके जीवन को आसान बनाओ, उसे मिले उसकी मेहनत का पूरा पूरा सम्मान, यहाँ सभी सच्चे अर्थों में होगा भारत देश महान, यहाँ आओ मिलकर प्रण ले, हम किसानों का मान बढ़ाएंगे, उनके सुने जीवन में फिर खुशियों के दीप जलाएंगे, क्योंकि जब खेतों में हरियाली होगी तभी देश मुस्कराएगा, भारत माँ का हर बेटा सुख और शांति पाएगा, जय जवान और जय किसान सिर्फ नारा नहीं बनना चाहिए, भारत के हर किसान को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। अगली मेरी कविता है सीमा का पहरी। जब पूरा भारत सोता है तब कोई सीमा पर जागता है, अपने अपने घर आंगन से दूर कहीं देश की रक्षा में लग जाता है, हाथों में बंदूक लिए वो सीने में जज्बा रखता है, भारत माँ की रक्षा खातिर हर मुश्किल से लड़ता है, वो सैनिक है इस मिट्टी का जिसे तिरंगे से प्यार है, जिसकी हर एक सांस में बस भारत माँ का सत्कार है, कड़कड़ाती ठंडी रातों में जब बर्फ पहाड़ों पर गिरती है तब वो सीमा पर खड़ा जवान अपनी ड्यूटी पूरी करता है, ना ठंड उसे भिगा पाती है ना गर्मी उसे झुकाती है, रेगिस्तान की जलती धरती भी उसकी हिम्मत अजमाती है, कभी ऊंचे पर्वतों पर कभी जंगल की राहों में कभी दुश्मन की गोलियों के बीच कभी तूफानी निगाहों में हर हालत में डटा हुआ है, वो भारत माँ का लाल है, उसके कारण ही सुरक्षित है अपना हर त्यौहार, जब हम दीपावली बनाते हैं घर घर दीप जलाते हैं तब कोई सैनिक सीमा पार अंधेरों से लड़ जाता है, जब हम होली में रंग लगाए गीत खुशी के गाए तब कोई अपने आंसुओं को चुपके से पी जाता है, उसकी माँ भी राह निहारे पत्नी आंखें बिछाए रहती, बच्चे पूछे पापा कब आएंगे पर किस्मत चुप रह जाती है, फिर भी वो अपने परिवार से ऊपर देश को रखता है, अपनी खुशियों की कुर्बानी दे भारत माँ को सजाता है, कितनी कठिन कठिन वो घड़ियां होती है जब वो युद्ध का बोल बजता है, हर सैनिक माँ भारती की रक्षा हेतु निकल पड़ता है, उसे पता नहीं लौटेगा या तिरंगे में घर आएगा, फिर भी हंसते हंसते वो मौत को गले लगाता है, उसके दिल में डर भी होता पर चेहरे पर साहस रहता, क्योंकि उसकी एक बहादुरी से पूरा भारत सुरक्षित रहता, कितने वीर शहीद हुए हैं इस धरती की रक्षा में, कितनों ने अपना रक्त बहाया भारत माँ की सेवा में, उनके बलिदानों के कारण ही आज तिरंगा लहराता है, हर भारतवासी गर्व से फिर अपना शीश उठाता है, पर सोचो उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी उस पल जब बेटी की अंतिम चिट्ठी आती होगी उसके घर, जब पत्नी की सुनी मांगे चुपके चुपके रोती होगी, जब बच्चों की मासूम आंखें पिता को ढूंढती होगी, फिर भी उस वीर की गाथा भारत का अभिमान बने, उसकी शहादत का हर हिस्सा किस्सा नई पीढ़ी की जान बने, सैनिक केवल इंसान नहीं देश की सांसें होता है, उनके कारण ही हम सब चैन की नींद सोते हैं, जब भी तिरंगा लहराएगा उन वीरों की याद आएगी, भारत माँ अपने बेटों की गाथा सदा सुनाएगी, आओ मिलकर प्रण ले, ये हम वीरों का सम्मान करेंगे, जो सीमा पर डटे हुए हैं उनका हरदम मान करेंगे, ना भूलेंगे उनके त्याग को ना बलिदान को भुलाएंगे, भारत माँ के उन वीरों का सदा शीश झुकाएंगे, जय हिंद की गूंज सदा हर दिल में जगानी होगी,
हर सैनिक की कुर्बानी।

0: की कहानी सबको सुनानी होगी, क्योंकि जब तक वीर जवान है तब तक भारत जिंदा है, उसकी हिम्मत से ही अपना देश और जिंदा है। मेरी अगली कविता है गांव की मिट्टी। गांव की मिट्टी से, गांव की मिट्टी का सुख, शहरों की ऊंची इमारत, दिल अक्सर तना होता है। चमक दमक की इस दुनिया में हर रिश्ता जैसे खोता है, भागम भाग भरी गलियों में चेहरों पर मुस्कान नहीं। लोग यहाँ तो मिलते लाखों पर कोई अपना जान नहीं। सुबह यहाँ मोबाइल जगाता, ना मुर्गे की मीठी बोली, ना मंदिर की घंटी गूंजे, ना खेतों की हरियाली। कुएं से ढका हुआ अंबर, शोर से भरी हर राहें, यहाँ मशीनों सा जीवन चलता। थक जाती मन की चाहे, पर मेरा गांव निराला है। धरती माँ का गहना है, जहाँ हवा में प्यार बसता है, हर चेहरा अपना लगता है। सुबह सुबह जब सूरज उगता, चिड़ियों का संगीत सुनाई दे, खेतों में लहराती फसलें मानो सोना मुस्कराए रे। पीपल की ठंडी छांव तले दादा किस्से सुनाते हैं, चूल्हे की मिट्टी खुशबू में घर और आंगन भग जाते हैं। शहरों में रिश्ते पैसों से अक्सर तोले जाते हैं, पर गांव में सुख दुख सारे मिलजुल कर बांटे जाते हैं। यहाँ किसी के घर में संकट हो, पूरा गांव सहारा बनता है। किसी की बेटी की शादी हो तो हर आंगन उजियारा बनता है। शहरों में पड़ोसी तक भी एक दूसरे को जानते नहीं, पर गांव में हर बच्चा जैसे पूरे गांव की जान। यही कच्ची गलियां, मिट्टी की खुशबू, बरगद की प्यारी छाया, इनमें जो अपनापन मिलता वो शहर कहाँ दे पाया। शहरों की रातें जगमग है, पर चैन की नींद नहीं आती। गांव की चारपाई पर लेकिन तारों संग नींद चली आती। शहरों की रोटी में स्वाद नहीं, ना माँ के हाथों की ममता, गांव की मोटी रोटी में भी है छुपी होती जन्नत। यहाँ कुएं का मीठा पानी मन को अमृत सा लगता है, शहरों की बोतल वाली दुनिया उस सुख को सब समझ पाती। गांव में त्योहार भी ऐसे जैसे पूरा परिवार हो, होली दीपावली तीज सभी में हर चेहरा त्योहार हो। शहरों में त्योहार अकेले कमरों तक सीमित रहते हैं, पर गांव में ढोलक बजती, गीत प्रेम के बहते, गांव की शामें कितनी सुंदर, सब घोघली छा जाती है। मंदिर की आरती की ध्वनि मन में शांति भर जाती है। ना ना दिखावा, ना छल कपट, ना झूठी शानो शौकत है, सीधे साधो के लोगों के दिल में बस प्रेम और इबादत है। शहरों में इंसान मशीन बना, दिन भर भागा जाता है, अपने ही सपनों की खातिर अपनों से दूर हो जाता है, पर गांव अभी भी जीता है। संस्कारों और प्रेम के संग यहाँ बुजुर्गों का आदर होता है। हर यहाँ रिश्तों में बसता रंग, हाँ गांव में मुश्किलें भी है, सुविधाएं की थोड़ी कमी, पर दिलों में जो सुकून यहाँ वो शहरों में मिलता नहीं। गांव की मिट्टी में खुशबू है जो आत्मा तक जाती है, इसकी सादगी और अपनापन हर दिल को भा जाती है। इसलिए मेरा मन कहता है गांव ही भारत की शान है, सच्चा सुख और सच्ची खुशियां बस गांव में की पहचान है। सह चाहे जितना चमके, गांव का सूरज न्यारा है, भारत की असली आत्मा तो आज भी गांव में प्यारा है। जय हिंद, जय भारत।
1: किसान भाइयों, अभी हम सुने रहा था कविता पाठ, कविता हमारा डॉक्टर सुरेंद्र श्रीवास्तव, और वाकई में बहुत ही अच्छी इनकी कविता लगी, और गांव और शहर की बहुत ही अच्छी उन्होंने बात बताई, और सही में अगर प्रेम प्यार और शांति छे तो वह गांव में छे। कार्यक्रम को आगे बढ़ावांगा न, अब सुनागा एक लोकगीत, एक गायोज राकेश तिवारी ना।

0: कृष्ण भाई बहुत ज अच्छो जो भजन थो कि मन भजलो सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। उम्र तो कितनी छे अपन का मालूम नहीं है, अपन तो रोज जो समझना चाहिए कि जो अपना से हो जाए वो करी लेवा। तो देखो ये तो अच्छो हमने लोकगीत सुनो, एक गायो तो राकेश तिवारी ना, ना हमारा कई किसान भाई छे जो खेती किसानी का काम करे, खेती बाड़ी का काम करे, पर साथ में पशुधन भी पाड़ज, कुछ डेयरी भी चलावे और कुछ अपना काम पूरता पशु भी रखे। तो पशु जब हम रखा तो हम पशु नाम टीकाकरण को काई महत्व छे एक बारा में जानकारी देने के लिए हमारी चौपाल पर है डॉक्टर पूजा गवई शासकीय प्राथमिक चिकित्सालय देवास से। तो ये बहन से बात कर ले अपन कि पशु नाम टीकाकरण को काई महत्व छे।
1: पशुपालक हमारे जो भी किसान भाई है उनके लिए पशुओं में टीकाकरण का महत्व बहुत ज्यादा रखता है कि जब हम पशुओं का पालन करें तो उनमें टीकाकरण होना बहुत जरूरी है। और टीकाकरण का मतलब ये है कि पशुओं को बीमारी से बचाया जाए। तो इस बारे में आज जानकारी देने के लिए हमारे चौपाल पे आई है डॉक्टर पूजा गवई शासकीय पशु चिकित्सालय देवास से ये है। डॉक्टर साहब राम राम।
2: राम राम
1: डॉक्टर साहब बताइए आपके पशुओं

0: टीकाकरण का कितना महत्व है?
1: जैसे कि हमने अपना विषय चुना है पशुओं में टीकाकरण, टीकाकरण की अगर बात करें तो टीकाकरण जो है जितनी भी संक्रामक बीमारी उनको रोकने के लिए किया जाता है, जिससे कि मृत्यु दर कम होती है और पशुधन की जो उत्पादकता होती है वो बनी रहती है। इसके लिए टीकाकरण करना महत्वपूर्ण है। जैसे खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ी बुखार जैसी बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि टीकाकरण न केवल पशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है बल्कि महंगे इलाज के खर्च को बचाकर पशुपालक की आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पशुओं को पहले तो बीमारी से बचाया जाए, पहले ही टीका लगा लिया जाए, तो एक तो पशुओं में बीमारी आएगी नहीं और पशु में बीमारी आएगी नहीं तो हमें इलाज कराने का खर्च भी हमारे किसानों को निश्चित रूप से बच ही जाएगा। जी मैडम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब अपन जैसे टीका किस किस समय पर हमारे पशुओं को लगाना चाहिए, इसकी आप जानकारी दीजिए।
1: देखिए, टीकाकरण के लिए जैसे मैंने बताया कि एक बीमारी होती है जिससे जिसको रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, पशुओं में हमको टीकाकरण करना है, तो इसका एक निश्चित समय निर्धारित है। जैसे कि हम बात करते हैं गलघोंटू HS बीमारी के बारे में, तो इसका होता है टाइम एक निश्चित रहता है, जैसे मानसून से पहले मई जून के समय इस टीके को लगाया जाता है। जैसे खुरपका मुंहपका बीमारी जो है उसके लिए हमको 6 महीने की उम्र से शुरू करना पड़ता है, ये साल में 2 बार लगाया जाता है। वो तीसरा है लंगड़ी बुखार, इसको भी हमको मानसून से पहले लगाया जाता है।
0: अच्छा,
1: जिससे कि ये बीमारी जब आने वाली होती है उसके पहले हम लगा लेते हैं तो जानवरों में ये बीमारी होने के बहुत ही कम चांस होते हैं कि इसमें बीमारी हो जाए।
0: अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छा पता, मतलब आपको मौसम के अनुसार अपने को पशुओं को चलना पड़ेगा
1: जी। और इसमें एक ये भी है कि उम्र का भी बहुत रोल है। जैसे देखा जाए तो 4 से लेकर 8 माह तक के जितने भी पशु हैं, ये शुरुआती जो उम्र है उनकी, इसमें जानवर ज्यादा बीमार पड़ता है।
0: अच्छा।
1: इसके लिए रोकने के लिए हमको इस उम्र में 4 महीने से लेकर 8 महीने के बीच में टीकाकरण करना जरूरी
0: है। अच्छा, तो 4 महीने से 8 महीने के बीच में जो हमारे पशु होते हैं इस उम्र के, उनको जरूरी लगाया जाता है ना? अच्छा, और बड़े पशुओं को भी लगाया जाता है, जैसे जो दुधारू पशु है?
1: हाँ, दुधारू पशुओं में जैसे हमने जो भी हमारा पशु है 4 से 8 महीने का है उस समय लगाया, उसके बाद में हमको इसको हर साल लगाना है ताकि बीमारी आने से पहले इसका रोकथाम हो जाए।
0: अच्छा अच्छा, मतलब ये बहुत ही अच्छी बात बताई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पशु को केवल एक बार टीका लगता है, जबकि ये मतलब पशु पालन अपने को जब तक करना है।
1: हाँ,
0: वो पशु जो हमारे घर में है तब तक उसे हर मौसम में, मतलब बारिश आने के पहले, गर्मी में, और ये टीकाकरण करना जरूरी है
1: जी। जैसे हर बीमारी का एक हो गया है कि ये बीमारी आ रही है।
0: अच्छा,
1: जैसे लंपी डिजीज आपने सुना होगा, बालाघाट एरिया में ज्यादा हो गई थी, तो उसको रोकने के लिए हम हर साल उसका टीकाकरण करते हैं, जिससे कि वो बीमारी आ ही नहीं पाती है और किसान को जो आर्थिक नुकसान होता है वो हो नहीं पाता, आर्थिक व्यवस्था जो रहती है वो अच्छी बनी रहती।
0: जी जी बिल्कुल, ये पशु जो पालन जो हमारे किसान भाई करते हैं वो करते इसलिए कि आर्थिक मदद मिले, खेती गृहस्थी के अलावा, खेती बाड़ी के अलावा उन्हें पशुपालन भी इसीलिए करना है कि कम से कम उनका जो पैसे का लेन देन का है या रोजमर्रा का जो हाथ चलता है पैसे से, उसकी पूर्ति जरूर हो जाती है। कि कई कई जो किसान छोटे पशुपालन भी करते हैं कि 4-5 भैंसों का ही है, कुछ डेयरी उत्पादन का भी करते हैं कि भाई डेयरी बड़ी बड़ी होती है जहाँ 50-50 गाय या भैंसे होती हैं। तो ये जो अपना टीकाकरण का मैं आपसे पूछ रही थी कि गाय भैंस बकरी सभी को लगाया जाता है?
1: हाँ जी, सबको लगाया जाता है क्योंकि बीमारी तो हर किसी पशु को हो सकती है।
0: अच्छा,
1: तो हमें इसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण करना बहुत जरूरी है। गाय भैंस में जो होते हैं टीकाकरण बीमारियों के जो भी है उसके लिए हमको लगाना है, और बकरियों में भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि टीकाकरण कराने के बाद में उनको रोकथाम की जा।
0: अच्छा,
1: तो समय समय पर हमें इनका टीकाकरण करना बहुत जरूरी।
0: अच्छा,
1: जैसे हम एक छोटा बच्चा जो होता है हम इंसानों का, हम उसको टाइम पे टीका लगाते हैं, उसकी पूरी जांच करवाते हैं, उसी तरह हमको अगर डेयरी फार्म को बहुत सफलतापूर्वक चलाना है तो टीकाकरण करना बहुत जरूरी।
0: बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे सभी किसान भाइयों को। आपसे ये पूछा जा रहे थे कि पशुओं को खरीदते समय भी हमें कोई सावधानी रखना चाहिए।
1: हाँ, जैसे कि हम जब भी कोई हाट मेले में जाते हैं पशुओं के खरीदारी के लिए, तो उस समय हम चाहते हैं कि हम बड़ा सा बड़ा पशु खरीदें, ताकि उसकी जो है हमारे पास दूध उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ी हुई रहे। हम छोटा पशु लेना ठीक नहीं समझते कि उसको हम कब बड़ा करेंगे और उसके बाद में कब उससे दूध प्राप्त करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि जाकर बड़ा पशु खरीद लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जो खरीदार है, जो बेच रहा है, उससे बात करनी पड़ती है कि क्या आपने अपने जानवर को टीकाकरण करवाया है या नहीं।
0: जी,
1: सबसे पहले ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद में अगर जो है आपको पशु खरीदते समय बिल्कुल हष्ट पुष्ट और एक्टिव एकदम सक्रिय मोड में दिख रहा है, इसका मतलब वो पशु अच्छा है। और तीसरी चीज ये कि उसके कान के पास टैग लगा होना चाहिए, पशु का जो टैग होता है 12 नंबर का, जिससे कि ये हो जाता है कि हाँ ये पशु जो है ये किसी का है, और इसमें आइडेंटिफिकेशन मतलब कि एक नामकरण उसका जो है उस 12 अक्षर के हिसाब से कर दिया गया है। अब आपका जानवर ना किसी को आप मतलब कोई चुरा सकता है, ना ही कोई बोल सकता है कि ये हमारा जानवर है, क्योंकि हमारे उसमें एक लगा हुआ है टैग, जिससे कि हम अपने जानवर को अपना बोल सकते।
0: ये टैग कौन लगाता है?
1: ये टैग जो है हमारे पशु चिकित्सालय में जो भी है, डॉक्टर है, गो सेवक है, मित्री है, ये जितने भी लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं कि हमको एक पशु गणना के लिए, पशु संगणना हर 6 वर्ष में होती है, जिससे कि हमको पता रहे कि ये जो पशु है इसमें कान में टैग लगा है, 12 अक्षर का डिजिट है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, वैसे ही इसमें कान के पास में 12 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ रहता है, जिससे कि हम पहचानते हैं कि ये जानवर कौन है। उसका 12 नंबर का डिजिट हम चढ़ा देते हैं ऑनलाइन, जिससे कि हमको पूरा पता चल जाता है कि इस जानवर की पहले किसके साथ में एक्टिव है, और किसका जानवर है, इसका पशुपालक का नाम क्या है, ये सब चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि हमको उसको पहचानने में आसानी होती
0: है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब ये समझ ले कि उसका टैग लगा है, मतलब आधार कार्ड है।
1: हाँ, ये उसका आधार कार्ड,
0: जानकारी अपने पास रहती है कि ये किसका है।
1: हाँ,
0: कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता कि भाई कहाँ से लाए, कब लाए, किधर से लाए, कोई अपने को बोल नहीं सकता, उसकी पूरी जानकारी हमारे पास होती है। बिल्कुल,
1: अपने जानवरों में टैग लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम हमारे जानवर को अपना बता सके,
0: अपना बता सके, और खरीदारी और बेचवाली दोनों में ही आसानी रहे।
1: हाँ
0: ना, तो अपने अगर टैग लगा हुआ तो अपने को अगर बेचना है तो भी बेच सकते हैं।
1: हाँ,
0: टैग लगा हुआ ही खरीदें तो हम बिल्कुल सेफ भी रहते हैं कि भाई ये पशु हमने कहाँ से खरीदा है, इसकी हमारे पास पूरी जानकारी रहती है।
1: जी
0: जी, तो अब हमारे किसान भाइयों को अगला, आप इसके अलावा किस पशुपालन में किस बातों का सावधानी रखें या क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें आप बताइए।
1: सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो भी डेयरी फार्म के लिए पशुओं को पाल रहे हैं, डेयरी फार्म को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जानवरों का जो रख रखाव है उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये करना है कि जब भी हम टीकाकरण करवाते हैं उसके सबसे पहले हमें जानवर को पेट के कीड़े की दवा देनी होती है, जिसको डीवर्मिंग कहा जाता है, वो करवाना जरूरी है। डीवर्मिंग के लिए एक गोली दी जाती है, फेनबेंडाजोल या एल्बेंडाजोल, जिससे कि जानवर में जितने भी कीड़े हैं, कृमि नाशक है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अगर वो नष्ट हो गए उसके बाद हमको टीकाकरण करवाना होता है। तो अगर हमको टीकाकरण मान लीजिए कि 8 करवाना है, तो हम क्या करेंगे, 8 दिन पहले उसको डीवर्मिंग कराएंगे, पेट के कीड़े की दवा देंगे, जिससे पेट के सारे कीड़े नष्ट हो जाएंगे और जो हमारा टीकाकरण का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले डीवर्मिंग करवाना है, फिर उसके बाद में टीकाकरण करवाना है। समय अनुसार अपने कोई भी पास के पशु चिकित्सालय में जाकर हमें इसकी जानकारी लेना है, और अगर वो लगाने से मना करते हैं तो बड़े अधिकारी को आपको सूचना देना है। उसके बाद में आपको उसके रख रखाव के लिए हमेशा हमको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे पशुपालन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमें पता नहीं होता है, अगर उसका पता करना है तो एक पास के पशु चिकित्सालय में जाके उसकी जानकारी लेना है, और उसके साथ में

0: उसको साथ में खाने के साथ साथ क्या क्या और देना चाहिए, जैसे हम हमारे खाने में प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित करके खाते हैं, उसी प्रकार जानवरों में भी यही है कि अगर हम उसको खाना दे रहे हैं, हम तो भूसा ही दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं या फल ही दे रहे हैं, लेकिन हम उसको किसी भी प्रकार का अलग से प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, विटामिन नहीं दे रहे हैं, तो अपने हॉस्पिटल में क्या हो रहा है कि इसके लिए मिनरल मिक्सचर आ रहा है, मिनरल मिक्सचर में सारे पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपलब्ध होते हैं, जिससे हम अगर जानवर को देते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, दूध देना भी बढ़िया हो जाता है, जानवर कम बीमार पड़ता है, खान पान उसका सुधर जाता है, जिससे कि हमको जानवरों को देखरेख में आसानी हो जाती है।
1: बिल्कुल, और अगर हमें दूध उत्पादन करना है तो लागत अगर कम रही, पशु हमारा स्वस्थ रहा और पशु का रख रखाव में हमने अच्छा ध्यान दिया तो निश्चित रूप से ये लाभ का धंधा हम बना सकते हैं।
0: हाँ,
1: पशुधन
0: की जैसे डेयरी फार्म के लिए किसान भाइयों को बहुत दिक्कत आ रही है कि हम कौन सी नस्ल का चुनाव करें, क्योंकि हम बोल तो रहे हैं कि हमें गाय पालना है, भैंस पालना है, लेकिन अगर आपने अच्छी नस्ल की, अच्छी गुणवत्ता की नस्ल नहीं लगी तो हमारा डेयरी फार्म जो है वो सफलतापूर्वक नहीं चल पाएगा।
1: बिल्कुल,
0: इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम गाय रख रहे हैं, गाय हम कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली रखेंगे तो हमें उसका उत्पादन भी अच्छा गुणवत्ता वाला मिलेगा।
1: बिल्कुल,
0: जिसमें मैं बात करना चाहूंगी कि गाय की कुछ नस्लें ऐसी हैं जिसमें हम अगर रखते हैं तो हमको निश्चित ही उसका दूध उत्पादन बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा और हमारा डेयरी फार्म भी अच्छा चलेगा।
1: अच्छा चलेगा,
0: जैसे गिर है, साहीवाल है, थारपारकर है, ये बहुत अच्छी नस्ल की गाय है।
1: अच्छा,
0: और भैंसों में देखा जाए तो मुर्रा है। अच्छा, मुर्रा जो होती है वो हमारे क्षेत्र में बहुत आसानी से मिल जाती है, और ये जो नस्ल मैं बता रही हूँ ये भारतीय जलवायु के लिए बहुत ही अनुकूल है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत मजबूत होती है और दूध भी देने के लिए ये बहुत अच्छी नस्ल है।
1: अच्छा,
0: तो हमें गाय अगर रखते हैं तो गिर, साहीवाल और थारपारकर रखता है, और अभी एक जो है क्रॉस ब्रीड वाली नस्ल है जिसमें जर्सी, जर्सी का नाम सभी किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इसकी दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है, 20 से 30 लीटर है, तो क्रॉस ब्रीड में अगर हम रखना चाहते हैं तो जर्सी रख सकते हैं, और अगर हमको रखना है साहीवाल, गिर या थारपारकर तो ये सब हरियाणा वाली नस्ल है जो कि बहुत अच्छा दूध उत्पादन कर रही है, और ये किसान जिसके भी पास डेयरी फार्म चल रहा है उनके पास आपको ये निश्चित ही रूप से ये वाली ब्रीड मिल जाएगी।
1: अच्छा,
0: तो और अगर हमें भैंस रखनी है तो भैंस का सबको पता है कि भैंस के लिए जो है उसका दूध में जो वसा होता है, पेट होता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो हमारे यहाँ पे जब हम अगर दूध का धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमको जो दूध है वो पेट के हिसाब से मिलता है, पेट के हिसाब से लोग खरीदते हैं, तो उसमें 6 से 8% वसा है, तो अगर हम भैंस को रखते हैं तो हमारा दूध उत्पादन ज्यादा हमको मिलेगा, आर्थिक लाभ ज्यादा होगा, और गाय के दूध में वसा का जो प्रतिशत है वो 5 से 6 के करीब होता है, जो कम है लेकिन उसका खान पीन जो है उस हिसाब से सही है, लेकिन अगर हमको अच्छे तौर पे चलाना है तो भैंस की संख्या बढ़ाएं, क्योंकि भैंस के दूध में हमको फैट ज्यादा मिलता है और बेचने पर उसका मूल्य भी ज्यादा मिलेगा।
1: अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे कृषकों को दी, आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाई, अभी हम सुनी रहा था कि पशु नामक टीकाकरण को काई महत्व छे, जानकारी दे रहा था डॉक्टर पूजा गवई, शासकीय प्राथमिक चिकित्सालय देवास की बहन थी, और देखो इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर हमको पशुपालन करना हो तो छोटी छोटी बात को जरूर ध्यान रखा कि उनका टीको लगेल छे कि नहीं, उनका कान में कार्ड लगेल छे कि नहीं, उन्हें हिसाब से अगर हम लेवा वो कि नस्ल देखे न लेवा तो निश्चित रूप से हमको कभी भी किसी भी प्रकार को नुकसान नहीं होगा ना। अब सुनांगा एक लोकगीत, एक गायोज राम अवतार अखंड अन साथीनन।

0: किशन भाई, अभी हमने जो लोक गीत सुनियो, गायक था राम अवतार अखंड। ना अब कार्यक्रम को समय समाप्त हो जाए रोज, आप सब नहीं लूंगा विदा, न कहूंगा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुर्खियों में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
1: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, तो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
2: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है। सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर जो होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा। आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही विकसित भारत है, तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स की बात इस एक्ट में कही गई है। कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उससे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही है उसमें से करोड़ों दीदियां, तो उनको भी आजीविका के कई साधन बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी के अंदर जो है वह काम लिए जा सकेंगे। 4 प्रकार के काम है मेनली। सबसे पहला, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं जल है तो कल है, वाटर सिक्योरिटी के काम जो है हमारे गाँव में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा किसान भाई भी वहीं पर बसता है, तो जल सुरक्षा के काम हमारा कामों का पहला क्षेत्र है। दूसरे काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे गाँव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है, इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड रिलेटेड स्ट्रक्चर, जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जी राम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार यह हो रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं फ्रेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके से मैं अगर इसे समअप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जयराम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है और उससे विकास की भी जो है एक इन्विसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जयराम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ।
1: जी बिल्कुल, ही आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बता रही है चार प्रायोरिटी एरियाज में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है 30 जून तक की कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
2: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए, इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी

0: ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी हमने 22 तारीख को 8 ऐसे नियम जो बने हैं विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत, उन नियमों को हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है पब्लिक डोमेन में डाला है और हमारे भारत देश के ई गैजेट में भी वो पब्लिश हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम फीडबैक मांगना चाह रहे हैं लोगों से, प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे। तो ये एक वाइडर, या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे एकेडमिशियंस हो, या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए, ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाए। तो 30 दिन तक यह रूल्स जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे, और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे, वो हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं, ताकि यह जो विकसित भारत जी राम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इससे अपेक्षा है।
1: रोहिणी जी, बेहतर व्यवस्था की और सुचारू रूप से बदलाव हो और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हो, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे, इस पर भी बल दिया जा रहा है, किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
0: सोनू जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं, और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है, जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं, तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की छोटे से जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं, ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है, जिससे कि हमें इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक आज, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा, तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है उसी का सत्यापन हमने ऑल रखा है, तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी, सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन आए अंडर विकसित भारत जी राम जी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली मिलता रहे,
1: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए।
0: बिल्कुल सही बात कही, यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, या ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8-10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है, और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है। तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा। और इस वर्ष विकसित भारत जी राम जी में अगर आप देखें सोनू जी, तो 95,692 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जी राम जी के लिए भारत सरकार ने किया है। तो इस 95,692 करोड़, दैट इज द बजट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड, तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 दिन के एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा।
1: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को, रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है। एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
0: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वहीं के श्रमिकों को हम ये रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था

नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
1: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
2: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है।
0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।
4: डगर विकास की, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों पर केंद्रित है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

0: और बुरहानपुर के ऐतिहासिक दर्रों से लेकर खंडवा के किशोरदा की यादों तक आज एक ही चर्चा है, वो चर्चा है जल जीवन मिशन की। एक ऐसा मिशन जिसने मालवा की पथरीली जमीन और निमाड़ की तपती धरती पर ठंडे पानी की फुहार पहुंचा दी। ये केवल पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं बल्कि करोड़ों सपनों में विश्वास का रंग भरने की कहानी है।
1: हर घर में नल लग गई है, साफ सुथरा पानी है, मशीन लगी है, उसके बाद दिक्कत खत्म हो गई।
2: अब ये यहाँ सुविधा होने से बहुत आनंद है गांव में।
3: अच्छा हो गया ना,
4: अब भी तो अच्छी व्यवस्था होगी, अब नल चालू हो गए हैं ना।
3: अभी नल लगी है तो अच्छा सुकेज करी सरकार ने,
5: जो टंकी से नल का पानी हो गया ना बढ़िया हो गया,
3: नल लगी है।
0: जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो गौरव से सीना तब चौड़ा हो जाता है जब बुरहानपुर का नाम आता है। जुलाई सन 2022 में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। यहाँ के 254 गांवों के सभी 1,01,000 से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से शुद्ध जल पहुँच रहा है। भले श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव PHED मध्य प्रदेश।
6: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश का सर्वप्रथम हर घर जल प्रमाणित होने का पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए ना सिर्फ बुरहानपुर, पूरा मध्य प्रदेश काफ़ी प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि हर घर जल प्रमाणित होना अर्थात बुरहानपुर जिले के पूरे 1,00,000 से अधिक ग्रामीण घरों में हमने शुद्ध जल टोटी के माध्यम से उपलब्ध कराया है। और ये पूरे प्रदेश के लिए इसलिए भी बहुत ही शुभ होगा और लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये हमारे राज्य के अन्य जिलों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि आज बुरहानपुर को ये सम्मान मिला है, कल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को भी ये सम्मान प्राप्त होगा।
0: बुरहानपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह।
7: जब हमने ये काम शुरू किया था तब हम लोग लगभग 37,000 कनेक्शन बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में थे, और आज हमने जो जितनी भी पात्र जनसंख्या है जो JJM के मापदंड को पूरा करती है, लगभग 1,00,000 कनेक्शन ऐसे लोगों को दिए हैं। और बुरहानपुर की सबसे विशेषता ये है कि इन जल जीवन मिशन की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी भी हमने ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह को दी है। इससे न केवल लोगों को पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि ये जल जीवन मिशन एक तरह से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का जरिया भी बनेगा। और जल जीवन मिशन के साथ में हमने एक और महत्वपूर्ण भारत सरकार की स्कीम को जोड़ा है, वो है जल शक्ति मिशन। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मिशन के बिना अधूरा है। जल शक्ति मिशन के तहत हम लोग जल जीवन मिशन के स्रोतों के चारों तरफ कुंडी, बावड़ियाँ, नए जल संस्थाओं का निर्माण, तालाब, पुरानी जल संस्थाओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉप डैम, गली प्लग और बहुत से जल संरक्षण की संस्थाओं पर काम कर रहे हैं। तो उससे ये जो जल शक्ति के तहत जो संस्थाएं बन रही है उससे जल जीवन मिशन का स्रोत में पानी बना रहेगा। और जब जल जीवन मिशन के स्रोत में पानी बना रहेगा तो उस पानी से हम गाँव में 12 महीने लोगों को पानी पिला पाएंगे। तो मेरा बुरहानपुर की जनता से अनुरोध रहेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, पूरे देश में इसका नाम हुआ है, तो हम लोग पानी को सहेज के रखें, धरती के अंदर पानी को वापस जाने दें, क्योंकि जितना पानी धरती माता में होगा उतना ही हम पानी वापस ले आ पाएंगे। तो हम लोग बहुत ही समझदारी से काम लेंगे और अच्छे से जल जीवन मिशन और जल शक्ति मिशन में काम करेंगे।
0: लेकिन ये सफर आसान नहीं था। धार और अलीराजपुर की पहाड़ियों पर जहाँ रास्ता बनाना भी एक चुनौती थी, वहाँ पानी चढ़ाना नामुमकिन लगता था। यहाँ काम आए हमारे इंजीनियर्स और सोलर तकनीक। शुद्ध जल का अर्थ है बीमारियों से मुक्ति। आंकड़े बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में नल से जल पहुंचा है वहाँ जल जनित रोगों में 40% तक की कमी आई है। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, खंडवा।
8: पानी केवल जीवन नहीं बल्कि हर माँ की चिंता, हर बच्चे की मुस्कान और हर परिवार की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी जरूरत है। एक समय था जब गांव की पगडंडियों पर सिर पर मटके उठाए महिलाएं दूर दूर तक पानी लेने जाती थी। कई बार वही पानी बीमारियों का कारण बन जाता था। लेकिन अब घर घर पहुंचा स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नई उम्मीद भी जगा रहा है। स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है स्वच्छ जल। वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुओं, तालाबों और हैंडपंपों

नमस्कार, आज हम उस अंचल की यात्रा पर हैं जहां रेवा की लहरें संस्कृति की कहानी सुनाती है। इंदौर की आधुनिकता से लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तक

0: निर्भर रहे, जहां कई बार दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, अर्थात हर घर जल। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल योजना ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। घर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। साफ पानी मिलने से जल जनित रोगों में कमी आई है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। पहले महिलाओं और बच्चियों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे। अब यह समय शिक्षा, रोजगार और परिवार की देखभाल में उपयोगी हो रहा है। श्रोताओं, स्वच्छ जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज की नींव है। जब पानी साफ होता है तो भोजन स्वच्छ बनता है, हाथ धोने और साफ सफाई की आदतें बढ़ती हैं तथा संक्रमण का खतरा कम होता है। मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में खंडवा जिले में जल जनित बीमारियां जैसे एक्यूट डायरियल डिसीज, टाइफाइड और कॉलरा या हैजा केसों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। एक्यूट डायरियल डिसीज के आउटब्रेक 2019 के पहले काफी संख्या में हुआ करते थे, जिसमें की लगभग 60% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ में जो जॉइंडिस और टाइफाइड बीमारियां हैं, इनके आउटब्रेक वर्ष 2019 के बाद से जिले में एक भी आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं किया गया है और पिछले 2 वर्षों में कॉलरा या हैजा बीमारी का भी एक भी आउटब्रेक जिले में रिपोर्टेड नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ जल उपलब्ध होने से जल जनित बीमारियों की संख्या और उनके आउटब्रेक में बड़ी कमी देखी गई है। नल से जल योजना सामाजिक और आर्थिक विकास का भी माध्यम बन रही है। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम पानी की बर्बादी रोकें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और इस योजना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। स्वच्छ पानी की हर बूंद अब केवल सुविधा नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य का संदेश बन चुकी है। जब घर के आंगन में नल से साफ जल बहता है, तब बच्चों की मुस्कान, माताओं की राहत और परिवार की खुशहाली भी साथ बहती है। आइए जल को सहेजें, स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ भारत के इस सपने को मिलकर साकार करें।
1: जल जीवन मिशन ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। उज्जैन संभाग में हजारों जल सखियां आज इस मिशन की रीढ़ है।
2: सरकार तरफ से नल जल की योजना आई है, तो अपने सभी ग्रामवासियों को सभी को साथ देना है और सभी का साथ चाहिए
3: कि हमारे वार्ड क्रमांक 1 में जो हमारे को जल कर वसूलना था, उसमें से वार्ड क्रमांक 1 के 1200 रुपए आ गए हैं, वार्ड क्रमांक 2 में 790 रुपए आ चुके हैं और वार्ड क्रमांक 3 में 2780 रुपए आ गए हैं।
4: सभी को समझाइश दे रहे हैं कि जल कर अपने को जमा करना है, जिससे अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उनकी जो समस्या है उसके विषय में भी जो वो बताते हैं, उसके निदान के लिए हम जलकर समिति को अवगत कराते हैं। जलकर समिति और हम साथ में जाकर के पानी के वेस्टेज नहीं जाने दें, इसके विषय में भी हम सभी बहनों को भी समझाते हैं, सभी भाइयों को भी समझाते हैं। पानी की बचत करना है, पानी का दुरुपयोग नहीं होने देना है, नल अगर पानी भर जाए तो बंद कर देना है, ऐसी समझाइश भी देते हैं जलकर समिति द्वारा।
5: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन भी गाँव में ये दिक्कत आ रही है, पहले से टंकी है या वाटर सप्लाई है और वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर पानी पीने में समस्या आ रही है, पानी घर घर पहुँचने में समस्या आ रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई टंकी का निर्माण करेंगे यहाँ पर।

इंदौर और उज्जैन संभाग के हर घर से आती पानी की ये कलकल दरअसल आत्मनिर्भर भारत की धड़कन है, जहां कभी सूखे के कारण

0: चैन होता था, आज वहाँ हरियाली और मुस्कान है।
1: पहले हम कुएं से पानी पीते थे, पेट दर्द होने लग जाता था, बीमार होने लगते थे हम। नल जल का शुद्ध पानी पीने लग गए हैं, अब डॉक्टरी खर्च भी हमारा आधा हो गया है।
2: मजदूरी पहला सर जवाब तो भी नहीं था, पानी में दिन भर हो जाता, हमारे टाइम बहुत व्यस्त हो जाता पहले, और अब पानी वही गयो तो नल चालू करो, पानी भरियो और मजदूरी भी चले जाओ।
3: जब से घर घर नल से जल आ रहा है तब से बहुत ही खुशहाली आ गई है, और पूरा परिवार मजदूरी पे जा पाता है और शुद्ध पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है।
0: इस मिशन का लक्ष्य था हर घर जल, जिसे मध्य प्रदेश के इन जिलों ने एक जन आंदोलन बना दिया। पर याद रखिए, ये नल की टोंटी से गिरता पानी केवल एक सुविधा नहीं, एक अमानत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। प्रशासन ने रास्ता बनाया है, अब उस रास्ते पर जल संरक्षण के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। विकास के ये रंग यूं ही खिलते रहे, अमृत की ये धारा यूं ही बहती रहे। आज की इस विशेष कार्यक्रम डगर विकास की में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी और सहजते रहिए जीवन की सबसे अनमोल बूंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात के 8:00
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गीत, जिसे आवाजें दी हैं नलिन दवे और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम है प्रेम।

प्रेम फिल्म का गीत अभी आपने सुना और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और बेला की आवाज़ों में इम्तिहान फिल्म का ये दो गाना। फैज़ अनवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत है अनु मलिक का।

0: इम्तिहान फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी इंदौर से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे समाचार संध्या और रात 9 बजे सुनिएगा News@9 दिल्ली से ही। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केन्द्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई

0: क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमरीका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसीदेवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड I am निशित कुमार विथ द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks,

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रगीत। लीजिए अब सुनिए हेमंत कुमार की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत। संगीत सी रामचंद्र का है और फिल्म का नाम है अनारकली।

मुकेश की आवाज़ में लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

चित्र गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत। इसे मुकेश ने गाया है, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है और फिल्म का नाम है यहूदी।

यहूदी फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इस गीत के साथ ही चित्रगीत यहीं संपन्न होता है। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही मीठे नगमे लेकर हम फिर से आ रहे हैं मन भावन कार्यक्रम में आपके पत्रों के साथ।

मन भवन के सभी श्रोताओं को वंदना तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपके पत्र हमारे पास बहुत सारे आए हुए हैं, तो शुरू करते हैं इन्हें पढ़ना। ये जो पहला पत्र हमारे पास है, ये है सोमानी नगर इंदौर से, और ये श्रोता हैं रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, सुवती, निधि, सोमानी और उनके साथी, लाबरिया भीरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और बामनिया परिवार के सभी सदस्य। गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 से अनिल कवचाले, सबिहा, सुषमा, सीमा, स्मिता, श्वेता, पूजा, तारिणी, मीनू और उनके साथियों ने हमें पत्र लिखा है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और उनके बहुत सारे साथियों का पत्र हमारे पास आया है और आप सभी सुनना चाहते हैं सखी रॉबिन फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर ने। लीजिए, सुनिए।

अगला ये पत्र हमारे पास है, लिखने वाले श्रोता हैं संस्कृति नगर इंदौर से, ये हैं हर्ष, मिताक्षी, बबलू, छाया, सोमतीबाई केसरी और उनके साथियों ने पत्र हमें लिखा है। एक निवेदन है, कृपया राइटिंग थोड़ी ठीक लिखें ताकि आपके नाम हम अच्छे से पढ़ सकें। अगला ये पत्र है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से, ये हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम और उनके साथी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का पत्र हमें मिला है। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार ने हमें पत्र लिखा है। आप सभी सुनना चाहते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया ये दो गाना। आवाज़ें हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

संग्राम लोहारी जिला खंडवा से हमें पत्र लिखा है आप सभी ने। राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला और गायत्री धनजे ने खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू और उनके साथियों का पत्र हमें मिला। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्ताबा, राउफ भाई, शाहिद भाई और उनके साथियों का पत्र मिला है। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने हमें खत लिखा। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार ने पत्र भेजा। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय का पत्र मिला। कोटवा नारायणपुर से बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय ने हमें पत्र लिखा है। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती, स्वाति और प्रयाग चौधरी ने हमें पत्र लिखा है। आपकी पसंद है ये गाना जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत मदन मोहन ने दिया है, आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद ने। फिल्म का नाम है छोटी बहू।

अगला पत्र हमारे पास आया है, इसे लिखा है राजपुर से। लिखने वाले ये श्रोता हैं घीसु दिलवारी, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारी और उनके साथी। धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैज़ान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी का खत हमें मिला। करनाल से सुधीर नूतन और उनके परिवार के सदस्यों ने हमें पत्र लिखा है। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर का पत्र हमें मिला है। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबेद, जुनेद, अलीना, आयत, मुआज मंसूरी और उनके परिवार के सदस्यों ने हमें पत्र लिखा है। आप सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में चोरी चोरी फिल्म का ये दो गाना। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। लीजिए सुनिए।

अब ये जो पत्र हमारे पास है, इसे लिखा है पेंटर रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टीकू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम और उनके साथियों ने। ये पत्र इन्होंने हमें लिखा है पागरा तालुका वसमत ज़िला हिंगोली से। अगला ये खत है अशोकनगर वसमत से ही। ये हैं पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू और उनके साथी, झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली छोटू दादा इंगोले और टेलर आरडी इंगोले का पत्र हमें मिला है। पालतानाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी का पत्र मिला। ये अगला पत्र है, ये है बिरडी से। ये हैं राजेश सोनी, कंचन, गायत्री ढोमणे, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे और उनके साथी। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां और उनके परिवार के सदस्य। मुकाम पोस्ट बुराला, तालुका मालेगांव से ये पत्र है। ये हैं दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका और गजानन घायल। आप सुनना चाहते हैं मॉडर्न गर्ल फिल्म का ये दो गाना, जिसे गुलशन बावरा ने लिखा है, धुन रवि ने बनाई है और आवाज़ें हैं सुमन कल्याणपुर और मुकेश की।

अगला ये पत्र हमारे पास है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। ये है हरदेव मीका, बलविंदर बिरग, जयतेग बिरग और मीका बिरग। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का पत्र मिला। नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई, चैताली और प्रीति चांदने का पत्र हमें मिला है। लेवाखेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाव, विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी, संजना, गणेश, कार्तिक, ब्रोनो, उषा, सोरना, स्वाति, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी ने हमें पत्र लिखा है। आप सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ओपी मेयर का संगीत पत्र किया ये गीत। फिल्म का नाम है 12 o'clock।

श्रोताओ, इसी गीत के लिए हमें और भी कुछ पत्र मिले हैं। ये हैं सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्नव और काव्यांशी कटारिया, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से, मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकिब पंवार, मोहम्मद हसनैन पंवार, बाजार चौक ग्राम दीवार से शंकर लाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराडे, ग्राम छायगांव मखन देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा का हमें पत्र मिला है। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, जगदीश आदिपा और उनके साथियों का पत्र मिला। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर हमें पत्र लिखकर बताइएगा। हमारा पता है मन भावन कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा केंद्र निदेशक मालवा हाउस इंदौर 452001 यह पिन नंबर। और हम आपके पत्रों का इंतज़ार करेंगे, फरमाइशी पत्रों का भी और आपकी प्रतिक्रियाओं का भी। तो ज़रूर पत्र लिखकर बताइएगा। अभी फ़िलहाल मुझे यानी वंदना तिवारी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भवन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन, कलाकार हैं पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संग करेंगे प्रशांत दे रॉय।
2: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Harishankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Muralidhar.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग दरबारी ऑन द सितार बाय पंडित हरशंकर भट्टाचार्य। He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छाया नट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में

0: चंदी तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानत इन द सितार रिसाइटल। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य कंक्लूड्स हिज प्रेजेंटेशन विद राग जिला काफी बिगिनिंग विद अलाप। द कंपोजिशन ऑफ द राग इज सेट टू गत इन दीप चंदी एंड द्रुत तीन ताल।

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
3: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation, in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day until tomorrow.